0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: देखो एक छोटा सा कन्फेशन है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, डेफिनेटली मतलब हम चाहने को तो डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी भी चाहते हैं, लेकिन जब बिल आता है ना हाथ में तो बजट और दिल दोनों टूट जाता है। बट दिस टाइम सिंगापुर का नेशनल डे सेलिब्रेशन आपके लिए कुछ अलग ही डेफिनेशन बन जाएगा, बिकॉज जोया लुकास लेकर आए हैं अमेजिंग फेस्टिव ऑफर। डायमंड ज्वेलरी परचेजेस पर आपको 9% जीएसटी अब्सॉर्ब्ड मिलेगा और गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पर फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। मतलब सेलिब्रेशन भी है, स्मार्ट सेविंग्स भी है एंड 10th of August तक ये ऑफर वैलिड भी है। सो डेफिनेटली आप अपनी बेस्ट डिजाइन्स चूज करने के लिए जोया लुकास के शोरूम विजिट कर सकते हैं, दैट इज 412 सरानगुन रोड या 320 सरानगुन रोड या 134 सरानगुन रोड। इस नेशनल डे को अपने आप से थोड़ा सा सेल्फ लव जोड़ते हुए ज्वेलरी परचेसिंग कीजिए और बने रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मस्ती मॉर्निंग शो पर। आपके साथ हूँ मैं आरजे नुपुर।
1: तो हरी लचके जब कमरिया सारा

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. See you guys.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
2: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: जयपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: धीरे धीरे से कैरेक्टर में जाते जाते जाते जाते जाते जाते रणबीर कपूर इतने ज्यादा कैरेक्टर में चले गए हैं, अब वो रामायण मूवी के बारे में ही सोच रहे हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। रिसेंटली रामायण मूवी का जो ट्रेलर है ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सुबह 4 बजे अपलोड कर दिया गया, एंड डेफिनेटली इस बार जो उसके VFX हैं वो काफी बेटर और काफी ऑसम निकल कर आए हैं। इसी बात पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी, रणबीर कपूर रामायण मूवी के कैरेक्टर में तो हैं और उन्होंने इस मूवी के लिए मेहनत भी बहुत करी है, दिन रात एक कर दिया है, लेकिन इनका नाम धूम मूवी के 4th पार्ट से भी जोड़ा जा रहा था कि रणबीर कपूर इसमें भी नजर आएंगे, लेकिन फॉर अ वाइल रणबीर कपूर ने ये सब मना कर दिया। उन्होंने बोला है वो सिर्फ 2 मूवीज में फोकस रख रहे हैं, 1st इज रामायण एंड 2nd इज लव एंड वॉर, जिसमें वो आलिया के साथ नजर आने वाले हैं। ठीक है भाई, रणबीर की तैयारियां औसम चल रही है, फिलहाल मेरी भी तैयारियां मौसम है, बढ़िया वाले गाने बढ़िया वाले बातें आरजे नुपुर यानी मेरे साथ मस्ती मॉर्निंग शो।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जिन्हें मेरी तरह माइक देखते ही एक्साइटमेंट होने लगती है या फिर नर्वसनेस होने लगती है, लेकिन माइक अपने हाथ में हम चाहते जरूर है, मतलब कैसा भी कोई ओकेजन हो, राइट? सो ये सारी चीजें जो आपके अंदर का फियर है उसको कॉन्फिडेंस में बदलने का काम, आपको एक राइट डायरेक्शन देने का काम, आपकी स्किल्स को इनहांस करने का काम, और एक ऐसी क्वालिटी जो आप हाइब्रिड मोड पर ऑप्ट करके अपने आप को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने के लिए मस्ती मीडिया नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस कर दिया है मस्ती मीडिया अकेडमी, राइट? रेडियो प्रेजेंटेशन से लेके पॉडकास्टिंग, इंटरव्यूइंग, कंटेंट क्रिएशन या पब्लिक स्पीकिंग एंड रियल स्टूडियो का फील, गाइडेंस और यहाँ पे शो करने का मौका, सब कुछ आपको मिल सकता है। सो एक ऐसा कोर्स जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा उभर कर आए। सो डेफिनेटली मस्ती मीडिया अकेडमी आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सो ईमेल के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और हमारे जैसे लोगों से गाइडेंस के लिए आप ईमेल करें info@radiomasti.com.sg। मैं आरजे नुपुर, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GTMartOnline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GTMartOnline.com।
1: GTMart योर पर्सनल ग्रोसर। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
2: आई लव यू रसना।
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: धीरे धीरे से मूवीज को इस तरह से प्लान किया जाता है कि फर्स्ट फेज जब उस मूवी का हम लोगों के बीच दिखाएं तो थोड़ी सी

कंट्रोवर्सी निकल कर आए, लोगों की जुबान पर चढ़ के आए, उसका नाम बदला जाए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक सवाल आ जाए, ये आजकल का नया ट्रेंड है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मसीह मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड अगर हम बात करें अजय देवगन की और उनके अपकमिंग मूवीज की, तो डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ वो एक नया कोलैबोरेशन, एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है चौहान। एंड डेफिनेटली ये जो नाम है वो कास्ट को दिखा रहा है और अब इन चीजों को लेके बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। बाय द वे, इस मूवी में काफी जेंजी सेंट्रिक कॉन्वर्सेशन आपको निकल कर आएगी, लेकिन इस मूवी में एक नई एंट्री हो चुकी है और वो है किसकी, विक्रांत मैसी की। राइट, 12th फेल स्टारर अवार्ड विनिंग एक्टर विक्रांत मैसी इस मूवी का हिस्सा होने वाले हैं। लेट्स सी धीरे धीरे से इस मूवी के बारे में और क्या डिटेल निकल कर आएगी, जिसकी वजह से ये पता चले कि अच्छा अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

यू नो व्हाट, हमें ना टेक्नोलॉजी का पता चल जाता है और उस टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरीके से जानना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको जान जाते हैं ना, उसके जस्ट बाद हम उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही मिसयूज करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी हमसे छीन ली जाती है। ऐसे ही होता है ना, घर वाले तो ऐसे ही करते हैं। आप बताओ आप क्या करते हैं। हाँ, तो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपड़ा को बताना चाहेगी, धीरे धीरे से हमें ना इतना तो पता चल गया है कि हर चीज को सिर्फ ऑन और ऑफ करने से काम नहीं चलेगा, उसकी थोड़ा ही और डिटेल में जाना पड़ेगा, उसको और समझना पड़ेगा, राइट? एंड ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ जी, साइबर सिक्योरिटी के नाम पर इंडिया में हर बार क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं, लेकिन क्या उनको सीरियसली लिया जा रहा है? ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपड़ा आपको बताना चाहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं एक अलग तरीके का साइबर सिक्योरिटी होल निकल कर आया था इन इंडियन मार्केट, कि चलते फिरते लोग अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से बहुत सारे ई रिक्शास को ऑफ कर दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ये जो हैकिंग सिस्टम है इसको वायरल भी कर दिया गया। सो बाय द टाइम बहुत सारे लोगों को इससे मतलब कहीं ना कहीं परेशानी हुई, पर अब सुनने में आ रहा है कि ये जो कमर्शियल ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब जो सप्लाई दी जा रही है, इनके ऊपर कुछ और क्लॉजेस ऐड किए जाएंगे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, उनको एनीवेयर मेरी जान।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: आजकल कोई बहुत ज्यादा तारीफें लिखकर भेज देता है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है आप तो मतलब दिल से लिखते हैं यार। कोई जेन्युइनली फॉर्मेलिटी करते हुए बहुत बड़े बड़े मैसेजेस लिखकर भेज देता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है ये शब्द इसके नहीं है। ना, ये तो चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल का बनाया हुआ मैसेज है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज एआई, दिस इज नॉट रियल। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। चलिए ऑन दिस नोट मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली इंडिया के मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था जो कि कंप्यूटर के थ्रू चल रहा था, इंटरनेट से चीजें कनेक्टेड थी, लेकिन उस एग्जाम पेपर में एक ऐसा आंसर आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि बीच में एक लाइन थी कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप इस लिंक पर टैप करो और आपको एआई आंसर बताएगा। ओह माय गॉड, इतना बड़ा लूप होल भरी दोपहर में। सो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इनको नकल तो कर ली जा रही है, पर बहुत ही अकल का इस्तेमाल ना करते हुए इन्हें प्लान अप नहीं किया जा रहा है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? अब घर पे तो ठाट से बैठकर इज्जत के साथ कोई बैक टू बैक व्यंजन ला कर देते और हमें खाना खिला दे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पॉसिबल है। कहाँ भाई? सिंगापुर का वन ऑफ द फेवरेट शाही महारानी रेस्टोरेंट में। और अभी देखो, नेशनल डे सेलिब्रेशन आ रहा है ऑन दिस ओकेजन। आप ना 31 अगस्त तक ये सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकते हैं। आपको एक ऐसा बूफे मिलेगा जहाँ पे तंदूरी स्टार्टर से लेकर डिलीशियस करी से लेकर नान से लेकर यमी डेजर्ट और एक्सट्रीम बढ़िया मसाला चाय तक सब कुछ मिलेगा, और वो भी सिर्फ $61 प्लस पे। और ये मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, ओके? जिसकी प्राइसिंग यूजुअली 68 प्लस डॉलर होती है, लेकिन इस नेशनल सेलिब्रेशन में इसके प्राइसेस कम कर दिए गए हैं। सो आप 31 अगस्त तक मंडे टू फ्राइडे 12 noon to 2:30 PM आ सकते हैं और इस ऑफर के मजे ले सकते हैं। सिंगल डाइनर के लिए $38 प्लस है, और वो किड्स जिनकी एज 7 to 12 years है उनका $25 plus डॉलर है। सो ये जो ऑफर है वो सिर्फ वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडे पर नहीं है। सो अपने फैमिली मेंबर्स को इस नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ले जाकर एक नया फ्लेवर दीजिए। रिजर्वेशंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं 6235-8840 या विजिट कीजिए www.shahimaharani.com। आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: You got to.
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे सही जवाब मुझ तक पहुंच गए मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। यू नो व्हाट, अब हमें बहुत मिसिंग लगता है वो पार्ट जब मूवीज पूरी फैमिली के लिए हो, पूरी फैमिली को हंसाने के लिए हो, राइट। लेकिन एक टाइम पर ऐसी मूवीज आई हैं और हमें एंटरटेन करके गई हैं। तो एक ऐसी मूवी जिसने टेलीविजन सेट्स पर आकर लोगों का दिल जीत लिया, ऐसी ही मूवी से जुड़ा हुआ एक सवाल, यानी एक फेमस मूवी का एक फेमस सा डायलॉग मैंने प्ले किया था और वो था,
3: अजी ये देखिए हमारा नया पपी।
4: अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ?
3: ये हिप्पोपोटामस नहीं, मेरा कुत्ता है।
4: अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ?
2: एग्जैक्टली, परेश रावल की आवाज में था ये डायलॉग, आपने सुना हंगामा मूवी से। इस मूवी में रिमी सेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेलीविजन स्क्रीन्स पर आई थी, उनकी आवाज को डब कर दिया गया था। एंड आफ्ताब और अक्षय खन्ना और परेश रावल की जो कॉमिक टाइमिंग है वो काफी अच्छी बोली गई थी। वो बोलते हैं ना, बहुत सटल सा हंसी मजाक इस मूवी में था, एक्चुअली था। तो चलिए, आपने बिल्कुल सही पहचाना और मूवी का नाम था हंगामा। On this note, me RJ Nupur signing off for now. मुलाकात होगी बहुत जल्द। Till then, अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: राम, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
4: Happy National Day, Singapore!
3: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
5: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Let's start the fun!

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। And welcome to Radio Musti 24/7 Live Musti 90s Mixtape. That is right. यही है उस शो का नाम और अगस्त के महीने में बिल्कुल वो भी नेशनल डे वाले लॉन्ग वीकेंड का जायजा सबके जुबान से सुनते हुए मैं हूँ 90s वाली आपके साथ। भाई कुछ ऐसा है कि 90s की दुनिया में घुस जाते हैं क्योंकि हमारी तो मंडे को छुट्टी है नहीं, हमारा वो लॉन्ग वीकेंड है नहीं, तो हम वो करते जो हम करते बेस्ट है, विच इज आवर जॉब टू कीप यू एंटरटेन। फिलहाल वो वक्त शुरू हो चुका है जिसको हम बुलाते हैं 90s के वो दिनों में जहां पे हम यू डूब जाएंगे, यू उन गलियों में खो जाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा एंड इन गलियों से बाहर निकलने का मन भी नहीं करेगा। भाई आपका फेवरेट कैसेट बॉक्स यहां पे खुलने वाला है, क्या खुल चुका है आज जो है? चलिए एक सवाल पूछती हूँ कि आपको याद है अपना बचपन या उसकी फीलिंग्स याद है? सोचिए, कभी किसी पुराने गाने की तरफ यू नो दो लाइन सुनते ही आपको स्कूल का कॉरिडोर जो है वो याद आ गया, या फिर किसी चिप्स की खुशबू से समर वेकेशन याद आ गया, या फिर किसी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग सीधा यू नो दिमाग में वो ड्राइंग रूम, वो टीवी, वो पूरी फैमिली सब एक साथ आ गए। क्यों होता है ना ऐसा, होता है ना। 90s सिर्फ एक, जैसा कि मैं कहती हूँ, टिकट नहीं था, वो एक इमोशन था, एक ऐसा जमाना जहाँ हैप्पीनेस का साइज छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। एक कैसेट, वो एक क्रिकेट बैट, एक साइकिल, एक मूवी टिकट, एक टिफिन बॉक्स, बस दिन सक्सेसफुल। और हमारा बॉलीवुड, उसने तो हमारे बचपन को बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया। कभी शाहरुख खान के खुले हुए वो बाहें, कहीं वो हमारे चीची की एनर्जी, या फिर माधुरी दीक्षित की स्माइल, कभी रहमान साहब का वो म्यूजिक, कभी नदीम श्रवण की वो मेलोडीज, आज भी बस इसी तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, यूं ही खूबसूरत गाने सुनते हुए जाएंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे एंड वी विल जस्ट सिंपली हैव अ गुड टाइम। क्योंकि 90s में भी तो हम यही किया करते थे, है ना, वी जस्ट सिंपली यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम, सेम टू सेम एकदम। चलिए 90s का म्यूजिकल यहां पे सफर शुरू करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: आजकल पता नहीं क्या क्या गेम्स निकल के रखे हैं और PS5, PS10, पता नहीं, इट इज सो वास्ट। बट इफ यू आस्क अ 90s किड, आई थिंक द 90s किड कैन एडजस्ट टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी हैव सीन इट ऑल, वी हैव प्लेड इट ऑल, वी नो इट ऑल। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड वन ऑफ द कार्ड गेम्स विच आई रिमेम्बर इज यूजुअली, अभी मैंने हाल ही में खेला भी था ऊनो, ठीक है, किसी फ्रेंड के बच्चे के साथ में खेल रही थी। बट देन आई वॉज रिमेम्बरिंग, भाई हम कौन सा खेलते थे, हम निकालते थे अपने ट्रम्प कार्ड्स, याद है आपको, सुपर हीरो, डायनासोर्स, कार्स, एयरप्लेन, सब एक टेबल पर आ जाते थे। वो कलरफुल कार्ड्स आपको याद है, हर कार्ड के पीछे नंबर्स होते थे, स्पीड, पावर, हाइट, वेट, टॉप स्पीड, हॉर्स पावर। माई ब्रदर यूज टू हैव दिस WWF का ट्रम्प कार्ड्स जो है वो उसके पास हुआ करता था। और फिर शुरू होती थी असली बैटल, मेरा 320, अरे तेरा 320, मेरा 450, जीत गया। खेल सिर्फ कार्ड्स का नहीं होता था, कॉन्फिडेंस का भी होता था। कभी कार्ड देखते ही लग जाता था ये राउंड तो पक्का मेरा है, और कभी किसी दोस्त के पास इंपोर्टेड ट्रम्प कार्ड्स का नया पैक आ गया तो बस वो उस दिन हमारे पूरे मोहल्ले का सेलिब्रिटी बन जाया करता था। एक एक कार्ड को कितनी संभाल के रखते थे, कॉर्नर्स फोल्ड ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, प्लास्टिक रबर बैंड लगा के पूरा डेक सिक्योर किया करते थे। सबसे फनी बात, रूल्स हर ग्रुप के थोड़े अलग हुआ करते थे, हर कॉलोनी का अपना एक वर्जन हुआ करता था। कोई हाईएस्ट नंबर से जीतता था, कोई स्पेशल बोनस रूल बना देता था, और हारने वाला हमेशा बोलता कि चल चल चलो एक वन मोर राउंड प्लीज। 90s में गेमिंग ग्राफिक्स उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इमेजिनेशन फुल HD में थी। एक छोटा सा डेक और पूरी दोपहर यूं ही निकल जाया करती थी। बताइए इंटरनेट कहाँ है, वाईफाई भी नहीं है, कोई चार्जिंग का टेंशन नहीं, सिर्फ दोस्त, थोड़ी सी कॉम्पिटिशन और बहुत सारी हंसी। आजकल मोबाइल गेम्स में अवतार्स होते हैं, लेकिन उस वक्त हीरो कौन है और विलन कौन, ये ट्रम्प कार्ड डिसाइड किया करता था। 90s के बच्चों का गेमिंग का असली मजा स्क्रीन देखकर नहीं, एक दूसरे की आंखों में देखकर जीता जाता था, है ना मेरे दोस्त, करा दिया ना याद। इसी बात के साथ, बातों के साथ साथ 90s के गाने चलते रहने चाहिए एकदम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। भाई आजकल अगर आप अपने किचन में जाए तो फ्रिज के मैग्नेट्स जो है उनको देखिए, पेरिस, सिंगापुर, लिव लव लव, पता नहीं क्या क्या क्यूट से स्माइलीज, बेसिकली ट्रैवल की मेमोरीज सब फ्रिज पे हमारे लगे मिलते हैं। लेकिन 90s के घर में फ्रिज डेकोरेशन का डेफिनेशन ही काफी अलग था, मुझे ऐसा लगता है। एंड एटलीस्ट इन द मिडिल क्लास फैमिलीज दिस इज व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माय हाउस। फ्रिज पर सबसे परमानेंट रेजिडेंट कौन होता था उस टाइम पे? बिजली का बिल, उसके साथ कभी कभी दूध वाले का हिसाब, कभी गैस बुकिंग का नंबर, कभी डॉक्टर साहब का विजिटिंग कार्ड, कभी किसी प्लम्बर का छोटा सा कार्ड। फ्रिज कम, घर का नोटिस बोर्ड ज्यादा हुआ करता था। और वो मैग्नेट्स भी कितने सिंपल होते थे, गोल वाला, फ्रूट शेप वाला, या किसी कंपनी का फ्री प्रमोशनल मैग्नेट, बस उसके नीचे पूरे घर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चिपकी हुई पाई जाती थी। एंड याद है यू नो, कभी कभी ना किचन में पापा आते ही बोलते थे कि भाई कहाँ है बिजली का बिल, कहाँ है। एंड मॉम यूज टू काइंड ऑफ बिना देखे जवाब कि भाई फ्रिज पे लगा हुआ है, कहाँ ढूंढ रहे हो, वहीं पे तो रहता है, कहाँ जाना है। हर घर का आंसर सेम। और कभी कभी बिल की लास्ट डेट निकलने वाली होती तो उस पर रेड पेन से सर्कल भी बना होता। रिमाइंडर ऐप नहीं थी, फ्रिज ही नोटिफिकेशन सेंटर था। और सबसे फनी बात, फ्रिज खोलने जाओ पानी पीने और नजर पहले बिल पे पड़ती थी, पानी बाद में, ड्यू डेट पहले आ जाए। भाई आज रिमाइंडर्स मोबाइल भेजता है, राइट, कैलेंडर नोटिफिकेशन भी देता है, लेकिन 90s में किचन से ज्यादा फ्रिज ही पूरे घर का सेक्रेटरी हुआ करता था। आपको नहीं लगता, उसे सब पता होता था किस दिन कौन सा बिल भरना है, किसको फोन करना है और किस नंबर पे गैस बुक करनी है। एंड ऑनेस्टली यू नो, कभी भी मैं किसी के घर जाऊँ मुझे ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार याद आ गई यार उन दिनों की याद आ गई। आप में से कोई आज भी ऐसा करता है, फ्रिज पे मैग्नेट के साथ बिल चिपका दिया वहाँ पे? पोस्टर्स तो बहुत सारे लोग वहाँ पे लगाते हैं रिमाइंडर्स वगैरह डालने के लिए, बट बिल नहीं चिपकाते होंगे, नहीं ना? इट्स वेरी 90s थिंग। आह, आई मिस दोज डेज। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून। फिलहाल के लिए चलते हैं, एक लेते हैं 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
0: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
0: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। अच्छा, फ्रिज एक जगह होती थी लेकिन फोन भी एक जगह हुआ करती थी जहां पे लैंडलाइन रखा हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। यहाँ पर आज भी अगर कुछ ढूंढना हो, रेस्टोरेंट, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बस क्या करना है, फोन निकालो दो सेकेंड में आपको जवाब मिल जाए। लेकिन 90s में देखिए, ना ही गूगल था, ना ही कोई और सर्च इंजन, हुआ करता था फोन का डायरेक्टरी। वो मोटी सी येलो कलर की डायरेक्टरी जो अक्सर लैंडलाइन फोन के बिल्कुल नीचे रखी हुई होती थी, और उसे उठाना भी एक मिनी वर्कआउट के जैसे ही, एकदम डंबल उठाने जैसे ही एकदम फील आता था कि भाई इलेक्ट्रिशियन का नंबर देखना ज़्यादा। तो फिर सीधा हम खोलते थे अपना वो येलो पेजेस और डायरेक्टरी वाला, अल्फाबेट के हिसाब से पेज का पैलेट है ना फिर शुरू होती थी सर्च, डॉक्टर का चाहिए तो उसका नाम क्या है, फिर उसे अल्फाबेट में जाओ, दूसरा किसी रेस्टोरेंट का कोई नाम ढूंढना है तो उसका नाम देखो, फिर उसके अल्फाबेट तक जाओ, और फिर ऐसे उंगली रख के सर से देखते रहो, बिकॉज वो इतनी छोटी फॉन्ट में इतने करीब एक दूसरे के होते थे दैट इफ यू डोंट कीप द फिंगर ऑन दैट पेज एंड देन ध्यान से उसको स्लाइड डाउन नहीं करो तो फिर आप मिस कर जाओगे, है ना। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब मेरी मम्मी ने तो इंपॉर्टेंट वाले तो हाइलाइटर से मार्क कर रखे थे कि आप उस पेज पे पहुंच जाओ तो आप सीधा उसको देखो और आपको पता चल जाएगा कि ये तो यहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ एक किताब के अंदर। कितनी पेशेंस हुआ करती थी ये सारी चीजें, है ना, करते हुए एंड फोन फिर भी जो है लग जाता था। एक तो जब नंबर मिल गया तो नंबर लगाया तो बिजी टोन, दूसरा नंबर लगाया, फिर तीसरा नंबर लगाया, लाइन में बफरिंग यू नो कम थी लेकिन एफर्ट पूरा पूरा हम डालते हैं। आज हम कहते हैं दैट गूगल इट मैन 90s में कहा करते थे कि भाई डायरेक्टरी निकाल लो, देख लो, है ना, ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है और उस डायरेक्टरी में सिर्फ फोन नंबर्स नहीं थे, पूरा शहर बसा हुआ था। मैंने जो है क्रश का नंबर डायरेक्टली से निकाला हुआ है, लाइक लिटरली मैं हम लोग सारी दोस्त मिलकर ना, नहीं निकालना ही, चलो राहुल बुला लो, उसका राहुल का नंबर निकाला है। अब भाई शहर में बहुत रहा

और राहुल के नंबर से भी तो डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा ना, राहुल के पापा का नंबर पता होना चाहिए क्योंकि उनके नाम से घर पे फोन लगा होगा। तो पहले तो स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करके जैसे तैसे करके पता करो कि इसके पापा का नंबर कहाँ है, क्या है, नाम क्या है। उसके बाद पापा के नाम से डायरेक्टरी पे जाओ, और अगर गलती से वो कोई कॉमन नाम निकल गया भाई साहब एंड बहन जी, ओ माय गॉड, तब तो हो जाती थी बहुत टेंशन। क्योंकि ऐसा ही हुआ था, अजय नाम था उसके पापा का, और इतने सारे अजय, अब कौन से अजय का बेट, चलो हमने उनका वो भी लगा लिया ठीक है सरनेम, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कॉमन वाला था, तो कई सारे वो हो गए थे। फिर हम लोगों ने हर उस नंबर पे कॉल करके, जो मेहनत देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ 90s में पॉसिबल था, आजकल नो पेशेंस, हमारे में भी नो पेशेंस, बट उस टाइम पे जान लगा दी थी हमने, जान। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। मैं हूँ अंतरा आपके साथ। एंड भाई, दिल तो पागल है, बताओ तो शाहरुख खान का नाम क्या था? आपको हो गया अंतरा, ये सवाल हमसे जो 90s का शो सुन रहा है। कम ऑन, हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अस। या राहुल, राइट? कुछ होता मैं शाहरुख खान का नाम क्या, राहुल। कभी कभी तो लगता था अगर 90s की फिल्म में शाहरुख खान है तो नाम पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहुल ही होगा। सच बताओ, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग बात है 90s वाली। वो मैं बताऊंगी आपको। सो 90s में कई राइटर्स और डायरेक्टर्स को ये लगता था दैट राहुल एक ऐसा नाम है जो मॉडर्न भी लगता है और काफी सिंपल भी है। इसकी रिटेन वैल्यू जो है वो काफी हाई है और रोमांटिक हीरो की पर्सनालिटी पर परफेक्टली सूट करता है। ना बहुत हैवी, ना बहुत अनकॉमन, बस एक ऐसा नाम कि राहुल, नाम तो सुना होगा। सी हाउ इट कम्स, लाइक इट्स मेड फॉर ईच अदर, सो जो ऑडियंस को अपना सा लगे। इसीलिए कई सारी रोमांटिक फिल्म्स में लीड कैरेक्टर का नाम बार बार राहुल रखा गया है। एंड धीरे धीरे ऑडियंस ने भी राहुल को बॉलीवुड का परफेक्ट लवर बॉय का एक उसके रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और देखिए ना, नाम सिर्फ नाम नहीं रहता, उसके साथ एक इमेज भी जुड़ जाती है। राहुल मतलब दिल से प्यार करने वाला, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा नॉटी एंड फुल ऑन रोमांटिक। जैसे 90s में सिर्फ राहुल ही फेमस नहीं थे, राज फेमस था, प्रेम भी फेमस था, अजय विजय तो बहुत ही फेमस थे। ये सब नाम भी अपनी अलग अलग पहचान बना चुके थे, लेकिन राहुल का क्रेज कुछ अलग ही लेवल पे था। लेट मी टेल यू, कितने बच्चों का नाम आज भी, ठीक है, राहुल आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपके आसपास, सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को शाहरुख खान पसंद है। आज भी जब भी कोई ऐसी मूवी देखो, हाय आई एम राहुल, भाई किसी से मिलो, ठीक है, कोई कहे हाय आई एम राहुल, सेंटेंस में कंप्लीट करती थी, ओ नाम तो सुना हुआ है। उसको समझ में आए ना आए, मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या जोक क्रैक किया, या फिर आई वुड फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, आई लव इट व्हेन दिस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो होते रहते हैं आसपास। मजे आते हैं यार, इतना सीरियस क्या रहना है हर टाइम पे, नहीं मस्ती जिंदगी में थोड़ी बहुत तो रहनी ही रहनी चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वो तो डेफिनेटली रहना चाहिए, इसके बिना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिर जाना किधर है, यहीं रहो।

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day. मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। सो कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से कोई खुशबू आए और बिना किसी वार्निंग के आप 25-30 साल पीछे चले जाएं। सच है ना, कुछ खुशबू ना यादें खोल देती है। 90s में जब सर्दी शुरू होने वाली होती थी तो घर की वो बड़ी सी अलमारी, गोदरेज की अलमारी चलो बात करते हैं, उसके अंदर से निकलते थे स्वेटर्स एंड शॉल्स एंड रजाई एंड ब्लैंकेट्स, और उन सबके बीच छोटी छोटी सफेद रंग की, I know, right? You guess that right? नैप्थलीन की बॉल्स। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुलता था, एक अलग से एकदम स्मेल का एकदम सुनामी आपके तरफ आता था कि भाई आज शायद उस खुशबू को का नाम जो है सबको याद ना हो, लेकिन फीलिंग आज भी याद है, राइट? एक एक मम्मी का हमारे ये गोदरेज की अलमारी से आती थी, दूसरी आती थी ट्रंक से, जो वो से एक स्टील वाली ट्रंक स्टोरेज में रखी हुई रहती थी, या फिर पहले स्टोरेज अब बेडकम बॉक्स में रखी रहती थी, अब तो वो स्टील वाली निकाली दी ट्रंक बाय द वे। तो उसमें से जब भी ऊनी कपड़े निकाले जाते थे तो उधर से आती थी ये वाली स्मेल, एंड यू नो फोल्ड खेल मम्मी खोलती और बोलती कि देखो छोटा तो नहीं हो गया। हम भी एक्साइटेड किया, स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है। उस वक्त विंटर फैशन ब्रांड डिसाइड नहीं करता था, मम्मी की अलमारी डिसाइड करती थी। किसी स्वेटर की स्लीव थोड़ी लंबी, किसी का बटन थोड़ा ढीला, किसी पर दादी ने बुनाई से नाम का डिजाइन बनाया हुआ है। हर वुलन कपड़े के साथ एक मेमोरी भी फोल्ड होकर रखी होती थी, एंड वो स्मेल सिर्फ कपड़ों की नहीं होती थी, उसमें पूरा बचपन बसा हुआ है हमारा, है ना? स्कूल की वो ठंडी ठंडी सुबह है, पिकनिक, विंटर वेकेशन, धूप में बैठे मूंगफली खाना, सब कुछ एक साथ याद आ जाता था। आजकल वार्डरोब्स कितनी फैशनेबल और डिजाइनर हो गई है, राइट? परफ्यूम सैशेज वगैरह आ गए हैं, लेकिन वो पुरानी अलमारी और उसमें बसी हुई वो फेमिलियर सी खुशबू, उसका रिप्लेसमेंट आज तक किसी ने नहीं बनाया। इसीलिए कभी कभी यादें देखने से नहीं, सिर्फ एक खुशबू से वापस आ जाती है। सो वेरी ट्रू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही 90s के गलियारों में खोते हुए रहेंगे, लेकिन 90s के गानों के साथ। तो रहिए मेरे साथ।

मुसलसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।

रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और चल रहा है यहाँ पर मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के घर में एक कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट आपको हर रोज होती हुई मिलेगी, भाई हॉर्लिक्स पी लो, बॉर्नविटा पी लो, हाफ, हम बच्चे तो मतलब हाफ, बस हाफ, पूरा नहीं पियेंगे। याद आया, ग्लास पूरा भर कर आता था और उसे देखते लगता था कि इसको इतना सारा कौन पिएगा। फिर होती थी जिंदगी और पूरी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेगोशिएशन, थोड़ा कम कर दो, बस आधा पियेंगे, आज मन नहीं है, और मम्मी का फिक्स्ड सा जवाब, पी लो, सेहत के लिए अच्छा है, वरना या तो ये खाओ या चाटा खाओ, यू डिसाइड। देखिए बड़े ही लिमिटेड नाम थे, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, है ना। हर घर का अपना फेवरेट हेल्थ ड्रिंक होता था और हर बच्चे का उससे बचने के अपने फेवरेट एक्सक्यूज, कोई बोलता है गर्म है, कोई बोलता है ठंडा करके दो, कोई बाद में पीती हूँ, लेकिन एंड में क्लास फिनिश करना ही पड़ता था और अगर ऊपर थोड़ी सी फोम बन गई तो उसे देखकर भी अलग ही एक्सप्रेशंस आ जाते थे। सबसे फनी मोमेंट जब मम्मी चेक करते पूरा पिया और हम ग्लास सिंक में रख कर भाग जाने की वो जो कोशिश हमारी होती थी कि मम्मी एक नजर ग्लास के अंदर देखती और तुरंत पकड़ लेती कि नीचे अभी भी बच्चा, जरा वापस आना, इधर जरा वापस आना। आज की डेट में हम कितने अच्छे बच्चों की तरह हम प्रोटीन शेक दो हमको, मतलब शुरू में तो मुझे उसका टेस्ट इतना गंदा लगता था ना प्रोटीन शेक का, बट आप देखो मैं पूरा पूरा पूरा खत्म करती हूँ एकदम एंड तक। कितने ऑप्शंस है ना, ये सारी चीजें पहले पी लिया होता तो आज पीना नहीं पड़ता। पहले तो मैंने प्लांट्स को भी पिलाया हुआ है, बट एनीवेज या आई हैव डन दैट। 90s में स्ट्रांग बनना हो, एग्जाम में अच्छा करना हो, हाइट बढ़ानी हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही ग्लास में मिलता था। सच कहूं उस वक्त हमें लगता था कि हॉर्लिक्स पीना तो पनिशमेंट है। आज मम्मी अगर वैसे ही प्यार से बोले कि भाई बेटा दूध पी लो तो शायद बिना नेगोशिएशन के एक ही सांस में पूरा पी जाए, क्योंकि कभी कभी टेस्ट से ज्यादा याद उस ग्लास को पकड़ने वाले हाथ की आती है। ओहो, हाय क्या ही बोल दिया मैंने, मैं दिस हैपेंस विद मी। टेस्ट से ज्यादा याद उस ग्लास को पकड़ने वाले हाथ की आती है। स्टे ट्यून्ड।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
5: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: This is so so very 90s that till date I keep एक बड़े से प्लास्टिक बैग के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक बैग and I am very very sure that मैं ही नहीं मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यही करते हैं अब भी यही करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। भाई 90s के घर का ये एक गोल्डन रूल हुआ करता था, कोई भी चीज एक बार यूज होकर रिटायर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आज जैसे शॉपिंग से आए, बैग निकाला, कल डस्टबिन। 90s में प्लास्टिक की शॉपिंग बैग की भी सेकंड इनिंग्स हुआ करती थी। याद है मार्केट से सामान आता था और मम्मी सबसे पहले क्या करती थी, बैग को सीधा डस्टबिन में नहीं, प्यार से उसको सीधा करती थी, सपाट

करती थी, उसको फोल्ड करती थी, कभी ट्रायंगल बनाती थी, कभी स्क्वायर बनाती थी, और फिर एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर बाकी सारे प्लास्टिक बैग्स के साथ उसको रख दिया जाता था। हर घर में एक बैगों का बैग जरूर होता था और उसके अंदर इतनी वैरायटीज, मेडिकल स्टोर की, ग्रोसरी की, क्लोथिंग स्टोर की, गिफ्ट शॉप की, जैसे अपना ही मैंने कलेक्शन बनाया हो। फिर जब भी किसी को कुछ देना हो या अचानक से सामान ले जाना हो, मम्मी सीधा वही लेजेंडरी बैग की कलेक्शन खोलती कि रुको इसमें रख लेती हूँ, हर साइज शेप फिगर सबका मिल जाएगा उसमें। कमाल देखिए, कोई बैग फटता नहीं था यार, सब बार बार ड्यूटी पर आ जाया करते थे। 90s में रीयूज वर्ड शायद हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस हमने सब कर रखा था। प्लास्टिक बॉटल पानी की, आइसक्रीम का जो बॉक्स था डब्बे वाला, मिठाई का डब्बा स्विंग बॉक्स बन जाया करता था, शॉपिंग बैग का ही बार बार रीयूज करना। आज सस्टेनेबिलिटी एक ट्रेंड है, तब वो घर की आदत थी। एंड उस जमाने में चीजों की वैल्यू सिर्फ पैसे से नहीं होती थी, उसका अगला यूजेज क्या होगा उससे की जाती थी। इसीलिए आज भी अगर मम्मी किसी शॉपिंग बैग को फोल्ड करके रख देती है ना, उनको रोकना नहीं यार, क्योंकि वो सिर्फ बैग नहीं संभाल रही होती, 90s का एक तरीका संभाल रही होती है, जहां पे हर चीज की एक और कहानी होती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बिल्कुल यूं ही बनी रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये बातें ना अभी कहां खत्म होंगी, अभी तो और भी चलेंगी, लेकिन साथ साथ में चलेंगे हमारे 90s वाले ब्यूटीफुल से गाने। स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 25.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ। एंड यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, मस्ती 90s मिक्स टेप। जी हाँ, और मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ। सो कभी नोटिस किया है, आज भी आजकल के जो बॉलीवुड फिल्म्स है, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी मूवी का पार्ट होता है ना। इट्स वेरी कॉमन, कोई लंदन जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, और अब तो एयरपोर्ट के लुक्स भी आ चुके हैं। सो इट्स लाइक वेरी वेरी वेरी कॉमन। तो ये 90s की अगर आप फिल्में याद करो, एयरपोर्ट सीन्स कितने कम हुआ करते थे, और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन था। उस वक्त एयरपोर्ट्स पे शूटिंग करना आज की तरह आसान नहीं होता था। परमिशन, सिक्योरिटी रूल्स, लिमिटेड शूटिंग टाइम और काफी ज्यादा एक्सपेंसेस, इसीलिए फिल्म मेकर्स अक्सर या तो एयरपोर्ट सीन्स अवॉइड कर देते थे या फिर स्टूडियो के अंदर ही एयरपोर्ट जैसा सेट बना दिया करते थे। थोड़े से चेक इन काउंटर्स बना दिए, कुछ सूट केसेस दिखा दिए, दो तीन एक्स्ट्रा ट्रॉलीज लेकर चल रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, और बस ऑडियंस मान लेती थी कि हाँ भाई दिखा रहे तो एयरपोर्ट ही होगा। 90s का सिनेमा इमेजिनेशन पर बहुत ही डिपेंडेंट था। हर चीज रियल लोकेशन पर शूट करना जरूरी नहीं होता था, स्टोरी रियल लगनी चाहिए, बस वही काफी है। और वैसे भी उस दौर में फॉरेन ट्रैवल भी कहाँ इतना कॉमन था, राइट? इसीलिए एयरपोर्ट देखना भी अपने आप में थोड़ा एक्साइटिंग लगता था। और अगर फिल्म में एयरपोर्ट आ गया तो समझ जाइए या तो हीरो बाहर जा रहा है या कोई इमोशनल रियूनियन होने वाला है। आजकल VFX है, रियल एयरपोर्ट्स हैं, ड्रोन शॉट्स हैं, लेकिन 90s के फिल्म मेकर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी ऑडियंस को पूरी दुनिया दिखा दिया करते थे। और शायद इसीलिए हम लोकेशंस नहीं कहानी याद रखते हैं, क्योंकि 90s बॉलीवुड हमें एक बात जरूर सिखाता है, मैजिक बजट से नहीं इमेजिनेशन से बनता है। भाई मैंने एक मूवी देखी थी, इंग्लिश बाबू देसी मेम, एंड टू ऑफ द वेरी वेरी आर लव्ड 90s के एक्टर्स उसमें थे, शाहरुख खान और सोनाली बेंद्रे। आपने अगर वो मूवी देख ली, एक तो पहले आप कहोगे कि ये क्या ही मूवी तुमने सजेस्ट कर दी, लेकिन इट इज क्रिंज टू द लेवल नेक्स्ट। और उसका एयरपोर्ट सीन अगर आपने देख लिया तो भाई आप कहोगे कि मतलब ओ माई गॉड, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, लेट्स गो।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: भाई 90s के बच्चों के लिए एक इंसान किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं था। वो एक्टर नहीं, ना ही वो क्रिकेटर, ना ही वो सिंगर, वो था हमारा केबल वाला। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप सुन रहे हो आप। मैं हूँ 90s वाली यात्रा आपके साथ। याद आया आपको कभी अचानक टीवी पर सिर्फ स्नो ही स्नो, यानी कि वो ये आने लगता था, या चैनल्स गायब हो जाते थे? जी हाँ, चैनल्स गायब ही हो जाया करते थे, लाइक क्वाइट लिटरली। बस फिर घर में एक ही अनाउंसमेंट होती थी कि केबल वाले को फोन किया जाए, और जिस दिन केबल वाला घर आता था, लगता था जैसे नासा का इंजीनियर हमारे घर पे उतर के आया हो। एक हाथ में टूल्स, दूसरे हाथ में वायर, और सीधा टीवी के पीछे, कभी टेरेस पर, ठीक है, कभी बालकनी में, कभी जंक्शन बॉक्स खोल कर कुछ एडजस्ट कर रहा होता था, और नीचे से कोई ना कोई जोर से चिल्लाता, आ गया, पिक्चर आ नहीं रही, हाँ जी हाँ जी, ये सिर्फ लाइट वाला और वो जो एंटीना वाला बच्चे नहीं करते थे, केबल वाले भैया भी हमसे यही कराते थे। फिर केबल वाला बोलता था, अब देखो अभी आया, और टीवी पर जैसे ही पिक्चर क्लियर होती थी, पूरे घर के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी कि भाई जादूगर अपना जादू करके गया है। उस वक्त चैनल्स भी कितने स्पेशल लगते थे, राइट? एक नया म्यूजिक चैनल मिल गया, या मूवी चैनल और ज्यादा पहले से क्लियर हो गया, बस पूरा दिन सक्सेसफुल। और केबल वाले की इम्पोर्टेंस देखिए, मोहल्ले में सब उसे उसके नाम से जानते थे कि शर्मा केबल वाले भैया को बुलाओ, गुप्ता केबल वाले भैया आ गए। आज वाईफाई स्लो हो जाए तो हम रीस्टार्ट का बटन दबा देते हैं, राइट? 90s में एंटरटेनमेंट रुक जाता था जब तक केबल वाला ना आ जाए। और सच कहूं, उस जमाने में बफरिंग कम थी, लेकिन केबल वाले का इंतजार ज्यादा हुआ करता था, एंड शायद इसीलिए टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं लगती थी, पूरे घर का एक्साइटमेंट का सेंटर हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अगर मेरी बात सुनते सुनते आपको एक मोमेंट, एक पल ऐसा लगे कि आपका पुराना वक्त एकदम साइंस से आपके आंखों के सामने आ गया हो, I think my work is well done. Nahi, stay tuned.

Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। मस्ती 90s मिक्स टेप सुन रहे हो आप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। और 90s भी वो एक टाइम था जब घर में किसी बिस्किट के पैकेट का जिप लॉक नहीं होता था। वो जिप लॉक होता है क्या था वो तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बिस्किट कभी हवा नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि रबर बैंड ही किंग था। अलग अलग कलर के, पिंक, येलो, ग्रीन, और फिर उसमें दो दो कलर्स के भी आते थे बाय द वे, जस्ट इफ यू रिमेंबर। सो पार्ले जी हो, मैरीगोल्ड हो, ग्लूकोज बिस्किट हो, पैकेट खुला, सबने दो तीन बिस्किट निकाले एंड तुरंत मम्मी पैकेट का मुंह फोल्ड करती थी, दो बार मोड़ती उसको और उसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दिया करती थी। बस हो गया जी एयर टाइट। कौन से क्लिप्स, कौन से कंटेनर्स, कोई फैंसी स्टोरेज बॉक्सेस नहीं, एक छोटा सा रबर बैंड और पूरा साइंस कंप्लीट। वैसे ही 90s के घर में रबर बैंड्स की कभी कभी भी नहीं होती थी। कभी न्यूज़पेपर के साथ फ्री मिल रहा है, कभी सब्जी वाले से मिल रहा है, कभी दूध के पैकेट के आसपास। मम्मी उन्हें संभाल कर रखती थी। हर ड्रॉअर में दो चार रबर बैंड्स तो ऐसे ही मिल जाया करते थे, पड़े हुए इधर उधर। और सिर्फ बिस्किट के लिए नहीं, धनिया बांधना हो, पेंसिल का बंडल साथ में करना हो, ग्रीटिंग कार्ड्स को साथ में बांध के रखना हो, या स्कूल का प्रोजेक्ट, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक रबर बैंड। आज किचन में एयरटाइट जार्स की लाइन लगी हुई होती है, वैक्यूम कंटेनर्स है, फूड क्लिप्स है, सिलिकॉन सील्स है, लेकिन उस वक्त एक रबर बैंड से ही घर चल जाता था और कमाल की बात, काम भी परफेक्टली करता था। 90s ने हमें सिखाया हर चीज का एक्सपेंसिव सोल्यूशन जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे सिंपल आइडिया ही सबसे स्मार्ट होता है। और आज भी किसी पैकेट पे, वैसे मेरे घर में तो आपको मिल जाएगा कुछ कुछ पैकेट्स जो है ना, मैंने रबर बैंड से ऐसे बांध के रखे हुए हैं। कुछ आदतें आपकी ना नहीं जाती है, ऐसा लग रहा है मुझे तो विरासत में मिली हुई है कि बेटा हमने तो ऐसे रखा है, तुम देख लो। मैंने कहा देखना क्या है, हम भी ऐसे रख लेंगे, हम दोनों चीजें करेंगे। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव दोज क्लिप्स एंड एवरीथिंग एंड ज़िपलॉक बैग्स, आई हैव एवरीथिंग, बट स्टिल यू विल फाइंड दैट वन पैकेट कहीं ना कहीं जिस पे रबर बैंड बता होगा। क्या करे यार, 90s वाला अपन का दिल ही कुछ ऐसा है। बॉस, स्टे ट्यून्ड।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप। यस, आज की कैसेट का साइट ए भी दिल के बड़े करीब था, तो हमने ट्रम्प कार्ड्स की फ्रेंडली राइवलरी खेली। वहां पर फ्रिज को घर का नोटिस बोर्ड बनाया, टेलीफोन के नीचे रखी डायरेक्टरी को फिर से खोला, शाहरुख और 90s के बॉलीवुड का वो जो राहुल वाला फैक्ट भी जाना, पुरानी अलमारी की खुशबू महसूस की, हॉर्लिक्स के ग्लास पर मम्मी से नेगोशिएशन की, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की सेकेंड लाइफ याद की, एयरपोर्ट वाले बॉलीवुड का बिहाइंड द सीन्स को समझा, केबल वाले भैया का इंतजार किया और बिस्किट का पैकेट को रबर बैंड से फिर से बंद किया। नोटिस किया 90s की सबसे बड़ी लग्जरी, ना इम्पोर्टेड टॉयज थे ना एक्सपेंसिव गैजेट्स, लग्जरी थी चीजों को संभाल कर रखना। एक शॉपिंग बैग दूसरी बार काम आता था, एक रबर बैंड महीनों तक चलता था, एक स्वेटर हर सर्दी में वापस मिलता था, और एक याद सालों बाद भी बिल्कुल नहीं लगती है। शायद इसीलिए 90s का याद करते वक्त ये वक्त हमें सिर्फ चीजें याद नहीं दिलाता, उन चीजों के साथ जीने का तरीका भी याद आता है। अगर आज के एपिसोड ने आपके किसी दिल के पुराने ड्रॉर को खोल दिया तो उसे बंद मत कीजिए, उसमें और भी बहुत सारी यादें रखी होंगी, हम उन्हें एक एक करके ढूंढ ही लेंगे। आप हमारे साथ उन यादों को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं 9158963 पर। फिलहाल अपनी 90s वाली अंतरा को बिल्कुल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कसर, एक और कहानी और बचपन की ढेर सारी खूबसूरत यादें लेकर बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी। एंड या, आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
5: टाइम टू रेज द बार।
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: बीन बजा के सबका ध्यान खींच लो,
1: सबको चूना लगा दो, सबको टोपी पिला दो, कोई साथ ना ले तो उसके खून से ही गो सींच लो। जिंदाबाद जिंदाबाद।

0: पकड़ो पेल दो, सूखी सूखी नफरतों में गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे। इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो, खींचो नोचो पकड़ो पेल दो, सूखी सूखी नफरतों में गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे। इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो।
1: 2018 है, देश को खतरा है, हर तरफ झाग है, तुम झाग के बीच हो, जोर से चिल्लाओ सबको।

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन
3: ऑल इज वेल
2: आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर मस्ती बॉयज आपकी चॉइस
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट आउट
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

शर्माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको

0: starting the countdown. ये है मस्ती टॉप 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: जी हाँ, जोश में रहो. आफ्टर ऑल कौन आया है, कौन आया है यहाँ पर? अरे मैं ही तो हूँ, पहचाना नहीं मुझे? रेडियो मस्ती 24/7 टाइम फॉर
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
1: भाई साहब, एक हफ्ता, जी हाँ, बीच में एक थर्सडे किसी और को इस कुर्सी पे जगह क्या दी? वो तो आकर सल्तनत बदल दिए हमारी. भाई साहब, हम तो कर रहे हैं कंप्लेंट इस समय. जी हाँ, 5:01 यहाँ पर और 42 सेकंड. रेडियो मस्ती 24/7 पर एब्सोल्यूटली रेणुका विद यू गाइस राइट अप टू 8 इन द इवनिंग. एंड आई एम कंप्लेनिंग अबाउट लास्ट वीक. जी हाँ, लास्ट वीक थर्सडे यहाँ पर आरजे अंतरा जी ने बोला कि रेणुका मैं करती हूँ आज टॉप चार्ट्स. भाई ठीक है, सबको कीड़ा है कि भाई टॉप चार्ट्स करने का मन है, ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी सल्तनत तो ना बदलो हमारी. मतलब नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, क्या किया क्या है, किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम, गाने ही उड़ा दिए यार. और मेरे सर का स्यापा, ओए ओए. जी हाँ, वो गाना फिर मेरी प्लेलिस्ट में घुसा हुआ था आज के दिन में. मैंने आकर जैसे देखे सारे के सारे टॉप चार्ट्स, टॉप 20 गाने, मैंने कहा है ये फिर कहाँ से आ गया, ये तो निकल गया था बड़े हफ्ते पहले. लेकिन नहीं, जब पूछा गया आरजे अंतरा से तो उन्होंने कहा जब हमें दोगे कुर्सी तो यही होगा तुम्हारे साथ. मैंने कहा ठीक है, फिर निकल जाओ आज.

0: कितना बोरिंग गाना है, इसको नंबर 14 पे रखा हुआ था आरजे अंतरा रे। मैंने कहा ना जी ना, ये तो नंबर 20 पे और उसके बाद 20 से आउट। जी हाँ, हम इसे एग्जिट का दरवाजा दिखाएंगे आज के दिन में। रेडियो मसी 24/7 गाइस, इट इज टाइम फॉर दी हंगामे वाला शो विच इज मसी टॉप चार्ट्स एंड मसी टॉप चार्ट्स पर रेणुका के साथ आपका स्वागत है। जी हाँ, गाना नंबर 20 सुनते हैं और बस गप्पे शप्पे बुराइयां शुराइयां और आज पूरी गॉसिप शॉसिप हो जाए ना। बिल्कुल, लेट्स गो।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 20.

0: सुन रहे हैं गाना नंबर 20। जी हाँ, ये है ये आवारापन, आवारापन 2 के साउंड ट्रैक से। इस समय आवाज है अरिजीत सिंह की, एंड दिस इज वन ऑफ हिज मेजर कोलैबोरेशंस आफ्टर ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। जी हाँ, इस ट्रैक को कंपोज किया है अमाल मलिक ने, एंड इट इज रिटन बाय रश्मि विराग, एंड दिस सॉन्ग, वेल, इट इज द थीम ऑफ लव, longing, redemption, इस तरह के emotions that have long been the heart of the Awarapan universe. आप जानते हैं कि Awarapan 2007 की फिल्म, 2007 की गैंगस्टर ड्रामा याद है आपको, वो आवारापन। जी हाँ, ये बिल्कुल इमरान हाशमी की वही आवारापन 2 है जो इस समय सीक्वल बनकर पहुंची है हमारे पास। ये आवारापन, व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक गाइस, एंड ऑफ कोर्स दुख है कि मुझे उसको 20वें नंबर पर रखना पड़ रहा है, बट खुशी भी है कि ये अभी भी टॉप चार्ट्स में है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: सपना जी, अगर तुम कहो तो हम और कोई ऐसा गीत चलाएं, कोई गाएं या फिर आपसे बैठकर बातें करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम। जी हाँ, ढीले ढाले लोग जो इस समय आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है हमारा ये थर्सडे वाला शो, जिसे हम कहते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: जी हाँ, check it out and check us out as well. जी हाँ, बिल्कुल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग वीकेंड कहाँ जा रहे हो? हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो बिल्कुल यहीं पर हैं। जी हाँ, ये बात अलग है कि हम हो सकता है कि अगले हफ्ते कहीं चले जाएं। रेडियो मस्ती 24/7 पर इस समय हमारे पांव बिल्कुल जमीन पर टिके हुए हैं और हम आपसे बताने वाले हैं कि एक फिल्म आ रही है, जी हाँ, जिसका नाम है ओ माई डॉग। What a cute name. And आप नाम से ही समझ सकते हैं that this film is about the relationships of humans with dogs and dogs with humans. इसमें देखेंगे हम पंकज त्रिपाठी जी को, जी हाँ, it is supposed to be a family entertainer and definitely इसमें जो दो दो क्यूट से कुत्ते हैं and that is Oscar and Bruno, उन दोनों के साथ में आप देखेंगे पंकज त्रिपाठी के अलावा माही राय, पवन मल्होत्रा, गीता अग्रवाल एंड साथ में राजेश कुमार। Well, there are lots and lots of these people जिनको आपको लगेगा यार सुना भी नहीं है इनका नाम, but I believe the film is an absolute amazing, amazing work, जिसमें greatest strength है फिल्म की sincerity। तो भाई तैयार हो जाओ, मैं तो अपने टोबी के साथ में देखने वाली हूँ। हो सकता है कि उसके दिमाग में थोड़ी सी तो अकल आ जाए ये देखने के बाद कि कितने अच्छे होते हैं कुत्ते, कितने वेल बिहेव्ड होते हैं कुत्ते और कितना कुछ करते हैं अपने मालिकों के लिए। He's too cute, by the way. All right, this is Gaana Number 19 coming up next on Radio Musti 24/7 Musti Top Charts. बस ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आके और बातें शातें करेंगे। तब तक अगर आपका कोई खास गाना सुनने का मूड है तो बीच बीच के जो फिलर्स है उसमें आई विल बी हैप्पी टू प्ले योर गानास इफ दे मैच माय मूड ऑब्वियसली। रेडियो मस्ती 24/7 5:17।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।
3: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है। मेरी प्यारी चलिया।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Alright, and इस समय अमीन सयानी जी की बात तो हम रखते हैं थोड़ी सी साइड पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अगर मस्ती मीडिया एकेडमी ज्वाइन करना है तो आपको बड़ी सिंपल सी काम बात करनी है। यू जस्ट हैव टू राइट टू अस एट info@radiomasti.com.sg और सेंड अ व्हाट्सएप टू अस 9151896 3। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट हैप्पी नेशनल डे सिंगापुर। अरे भाई, नेशनल डे के दिन में वैसे ही मूड ही अलग होता है। एक तो आजकल वैसे ही सिंगापुर में मूड अलग होता है, राइट? यू जस्ट गो एनीवेयर व्हाटएवर एंड यू सी द रेड एंड व्हाइट फ्लैग्स एवरीवेयर एंड यू सी दैट हैप्पीनेस। और उस दिन मैं बड़ी एक्साइट हो रही थी कि भाई मेरे घर के बाहर ट्रैफिक जैम था। कोई खुश नहीं होता ट्रैफिक जैम से, लेकिन मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मुझे ना एक यही टाइम होता है सिंगापुर में जब लोग ना चूचू नहीं कर रहे होते, गाड़ियां धीरे चलती हैं, ट्रैफिक जैम होता है, तो बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द फायरवर्क्स, राइट? सो जानबूझ के धीरे चलाते हैं, जानबूझ के साइड पर खड़ा कर देते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी फाइन नहीं करती। अय हय हय हय, ऐसा मतलब याद आ जाती है अपने बचपन की कि जब हम कहीं भी गाड़ी पार्क करके और दो मिनट आए करके चले जाते थे, और वही वाली फील आ गई सीरियसली, एंड आई रियली एंजॉयड इट। बट नेशनल डे, अरे यार, मतलब एक बार बताओ, खाना खाए बिना तो कोई भी दिन का सेलिब्रेशन ही नहीं हो सकता पूरा, राइट? सो हमारी जो शाही महारानी रेस्टोरेंट है ना, ओए होए, प्राटा स्टेशन, ओ हो हो, स्पेशल मेन्यू है पूरा का पूरा नेशनल डे का। लंच की बात कर रही हूँ मैं, एडल्ट्स ईट फॉर 58+ एंड चिल्ड्रन फॉर $40+। बस आपको क्या करना है, जाना है वहाँ पर और प्राटा स्टेशन को लूट के रखना है, ठीक है? अगर आप उसको देखो ना, उसमें लोकल करी चिकन साथ में है और वेजिटेरियंस के लिए अपनी अलग ही एंगल है, बट यू कैन नॉट मिस दिस, सीरियसली, इट्स अ वंस इन अ ईयर काइंड ऑफ एन ऑफर। शाही महारानी 6235-8840 या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर अपने आप रिजर्वेशन कर लो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, उनके जो स्पेशल डेज वाले होते हैं ना दिन और खाना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एंड आई एम टोल्ड देर आर वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट फॉर दिस वन एज वेल ऑन नेशनल डे लंच। का नंबर 18, क्यों रोएंगे हम तन्हा, मतलब दो लोग साथ में मिलकर रोएंगे, क्या कह रहे हैं ये लोग।
1: एवरी सेलिब्रेशन बिगिंस अराउंड अ टेबल, and this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
4: Happy National Day, Singapore!
1: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58+, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
5: Trending song, number 18.

0: अमेजिंग ट्रैक ना, इन दोनों की आवाज जब साथ में मिलती है ना, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज सचित एंड परंपरा टंडन। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर हैं ये दोनों के दोनों, इंडियन म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड सिंगर। पति पत्नी हैं ये, मतलब बाद में बने, पहले गाना शुरू किया था। एंड अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कबीर सिंह, जी हाँ, 2019 की कबीर सिंह की मेगा हिट गाना बेख्याली, उसके साथ में ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ऊपर ही ऊपर पहुंच गए ऑन रेडियो मसी 24/7। अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल रेट्रो गाइज, आई होप यू विल एंजॉय दिस एज वेल। दिस इज मसी टॉप चार्ट्स, और बीच बीच में ऑफकोर्स आपकी मेरी मस्ती तो चलती रहेगी। 9151896 3 इज अ टेलीफोन नंबर इन केस यू वांट टू रीच मी राइट अवे।
1: Musty Song of the Hour.

एंड ऑब्वियसली यू गाइस रिमेम्बर, उफ क्या लग रही थी इसमें हमारी डार्लिंग परवीन बाबी. ओहो हो हो, शी एब्सोल्युटली लुक्ड स्टनिंग इन दैट गोल्डन गाउन. डू यू रिमेम्बर इट गाइस? व्हाट फिल्म इज इट? याद है? अगर याद है तो मुझे भेज दो अपने जवाब 9151893 पर. नहीं याद है तो जाओ गूगल कर लो. वैसे भी जवाब भेजने से पहले गूगल ही करोगे आप लोग. रेडियो मस्ती 24/7 एब्सोल्युटली लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज इज रेनुका विद यू. जी हाँ, रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक और रखूंगी आपको अपने साथ, प्रॉमिस.

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: All right. If you have not gone to Joyalukkas or unke special National Day wala One Nation Infinite Brilliance wala offer aapne jaake nahi dekha hai, to well, you are truly missing out on something, guys. This is Renuka with you, Radio Masti 24/7. और आपको मैं बता रही हूँ कि भाई जोयालुकास के पास इस समय 9% जीएसटी ऑफ वाला ऑफर है और साथ ही साथ में 30% तक का ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस है ऑन गोल्ड ज्वेलरी. सो अगर कुछ लेना है तो यही मौका है, जाओ जाओ जाओ. लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपको बताने वाली थी कि आपने हमारे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज देखे होंगे जिसमें कि कुछ गिने चुने लोग आकर बता रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा प्राउड माइलस्टोन सिंगापुर में कौन सा रहा है आज तक का. सो वेल, डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आपको हिस्सा बनना है उन वीडियोस का, देन यू कैन राइट टू अस एज वेल, क्योंकि आपको मिल रहा है एक स्पेशल जोयालुकास से बड़ा ही स्पेशल वाला ज्वेलरी बॉक्स. बॉक्स वो दे रहे हैं, ज्वेलरी आपको उसके बाद खरीद के डालनी है उसके अंदर, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग. ऑफर भी वो दे रहे हैं आपको. सो ये सारी चीज करने के लिए आई टेल यू दैट बॉक्स इज वर्थ इट. इफ यू टेक अ लुक एट इट, यू विल फॉल इन लव विद इट. ऑलराइट, सो इन केस यू वांट टू सेंड अस योर वीडियो, देन डू टेल अस, ताकि हम आपको बता सकें कि क्या रिक्वायरमेंट्स है उस वीडियो के. And then after that, आप भी हमारे सोशल मीडिया पर फीचर हो सकते हैं in that One Nation Infinite Brilliance. On Radio Masti 24/7, हमारा अगला गाना है गाना नंबर 17. लो, तीन गाने सुना दिए, अब वेलकम कर रही हूँ मैं. वेलकम वेलकम वेलकम एंड फॉलोड बाय नंबर 16. आप बोलोगे इनको सारे गाने गाने जरूरी नहीं है तेरे को, तो तू ही गा ले, फिर इनको चलाने की जरूरत ही नहीं है. रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ, अप नेक्स्ट नंबर 17.
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17.

वेलकम टू ऑल दोस पीपल हू टेक्स्टिंग मी राइट नाउ. जी हाँ, स्वागत है आपका रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स और वेलकम टू द जंगल जो कि जून में रिलीज हुई थी. बड़ी केओटिक स्टार स्टारेड एक्शन कॉमेडी फिल्म, तीसरी फ्रेंचाइज इन द वेलकम फ्रेंचाइज. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, थोड़े मिक्स रिव्यूज हैं कि हिट थी या फ्लॉप थी. आपने देखी तो बताइए हिट थी या फ्लॉप थी.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Trending song number 16.
4: And this next track is again in the voice of Arijit Singh. जिससे पहले कि उन्होंने अपना exit announce किया था फिल्म की playback singing से, rumors हो गए थे कि उन्होंने beg किया filmmakers to let him sing it. Our music director Pritam, well, he publicly said ऐसा नहीं है. Before he did his retirement announcement, it was already recorded.

0: वाह वाह वाह, मैं ये जब एंड सुनती हूँ ना इस गाने का, तो मैं हमेशा सोचती हूँ अरिजीत सिंह भाई, तू गाना बंद कर रहा है फिल्मों में, तू करेगा क्या? इससे बेहतर है कुछ तेरे पास करने के लिए? सीरियसली, इससे भी बेहतर? नो वे।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: Of course, we want you to check us out. It's about 5:46 by the studio clock, and this is your girl Renuka on the airwaves. जी हाँ, bringing to you musty top charts. Musty top charts में अगली खबर, as you know, हमारी ये जो खबरें होती है ना on Thursday evenings, it's all about Bollywood, it's all about gossip, it's all about हम ना इधर की उधर बात करते हैं इस वाले शो में. If I want to really put it in a very very that kind of a way, but you know what, रामायण के बारे में बात करना चाहती हूँ अब, क्योंकि मैं भगवान के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए I'm going to really be a little serious on this one, all right? The makers behind Nitesh Tiwari's ambitious mythological epic, अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने release date बता दिया भाई कि film की पहली installment जो कि इस दिवाली पर release होनी थी, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. So well, उसकी date आ गई है और date है November 6. लेकिन उसका क्या reason है? ये जानना जरूरी है, all right? और वो reason ये है कि इसमें of course आपको दिखेंगे रणबीर कपूर, इसमें दिखेंगी साई पल्लवी, और हाल ही में हमारी जो सीता माता है पुरानी वाली, मतलब दीपिका जी, उन्होंने ये कहा कि भाई साई पल्लवी कैसी लगेगी सीता बनके, बिकॉज वो तो ऑथेंटिक सीता थी ना, तो उन्होंने कहा कैसी लगेंगी ये, क्योंकि इनके तो घुंघराले बाल हैं. लेकिन हमेशा हमेशा हमने जब भी सीता माँ के बारे में बात करी है तो हमारी माइथोलॉजी में कभी भी घुंघराले बालों का जिक्र नहीं किया गया है. सो मतलब कैसी लगेंगी वो, इतने डेप्थ में मैं तो कभी गई नहीं यार. एज लॉन्ग एज शी प्लेज द रोल वेल, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? वी कैनॉट हैव सीता जी का असली स्वरूप एनी वे, वी डोंट नो कैसे था और वाई नॉट, राइट? सो यश भी है इसमें मेन लीड रोल में, एंड ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज वेरी वेरी मच अवेटेड. पर सवाल ये है कि 6 नवंबर ही क्यों? तो आप जानते हैं अच्छे से कि भाई 6 नवंबर जो होता है ना, वो उस तारीख होती है जहां पर रणबीर कपूर जी की बेटी, जी हाँ, उनका जन्मदिन है. सो आप सोच सकते हैं कि भाई अगर उनकी बेटी का बर्थडे है तो दिस डे बिकम्स वेरी वेरी स्पेशल, एंड दैट्स व्हाई ही रिक्वेस्टेड कि रामायण का जो रिलीज है, इट शुड एक्चुअली हैपन ऑन दैट डे. So well, that is really cute, because मुझे लगता था कि you know, each one of us thinks कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा special हैं, वो हमारे लिए बहुत lucky हैं. मुझे तो डर इस बात का है अगर तो बेटा film हुई बिल्कुल totally flop, तो फिर रणबीर कपूर जी अपनी बेटी की तरफ देख के क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोचो. Radio Musti 24/7 coming up next is a beautiful retro किशोर कुमार की आवाज में. सुनते साथ साथ सेंटी होते हैं, ठीक है?
1: Bollywood Flashback.

0: दिल क्या करे। जी हाँ, ये जो गाना है ना, आप जानते हैं कि आनंद बख्शी ने 10 मिनट के अंदर अंदर लिख लिया था ये गाना आफ्टर कंपोजर राजेश रोशन प्लेड द ट्यून फॉर हिम। And of course, it led to Rajesh Roshan winning his first ever Filmfare Award for Best Music Director for this film. What an amazing album of Julie, right? Julie ke album top 3 best-selling soundtrack albums with he of 1975. Jante hain kaun si baki do film mein thi? Well, that was Sholay and Sanyasi. To sochiye, Vikram aur Lakshmi ki ye wali film kisne socha tha that it's going to be one of the best-selling albums, right? Aur uspe Filmfare Award and all that, not bad. But what an amazing track, guys. हमेशा ये जब भी गाना सुनते हैं ना, ओए होए, मतलब ऐसा लगता है कि किशोर कुमार जी ने वाकई दिल क्या करे जब किसी को, ओहो हो।
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: For showtime

भाई साहब चुनरी चुनरी गाना तो यहाँ टिका हुआ है, लेकिन इस फिल्म को देखने की हिम्मत, बाय गॉड की कसम, आपको 10 दिन जिम जाके उसके बाद आप जा पाओगे इस गान फिल्म को देखने के लिए। मैंने देखनी शुरू करी है प्राइम पर एंड आई जस्ट कुड नॉट। इफ क्रिटिक्स हैव गिवन दिस फिल्म 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, इतने भी कैसे मिल गए।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: OG rockstar, original gangster rockstar.
3: कभी कभी अपनी बुराई भी सुनने में कितनी स्टाइलिश लगती है नहीं। ओजी रॉकस्टार ऑन रेडियो मसी 24/7 6 बजे के उस पार। जी हाँ बिल्कुल, रेणुका आपके साथ में यहाँ पर और चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स। मसी टॉप चार्ट्स पर एक ताजा खबर कुछ ऐसी बताती हूँ कि गालियां देने में दीपिका पादुकोण बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती है। कैन यू बिलीव इट, गालियां देने में तेज है। ओहो Alright, so now let me give you the rest of the context, क्योंकि अभी ना मैं एक बहुत ही चीप vernacular newspaper जैसा sound करी मैंने कि यार किसी तरीके से headline ऐसी दे दो कि newspaper बिक जाए, तो बिल्कुल वैसी वाली बात मैंने करी है अभी। लेकिन इतना बताना चाहूंगी कि जब रामलीला, जी हाँ गोलियों की रासलीला रामलीला, उसकी जब प्रैक्टिस हो रही थी, जब प्रेपरेशन हो रही थी फॉर दैट रोल, दीपिका पादुकोण she is known to completely disappear into her characters, you know, so मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक तरफ रणवीर सिंह जैसा बाप हो और एक तरफ दीपिका पादुकोण जैसी माँ हो, तो भाई बच्चा तो मेरे को लगता है पैदा होते ही एक्टिंग शुरू कर देगा, राइट? सो आई एम श्योर दुआ इज ह्यूज इन दैट एरिया ऑलरेडी, एंड द सेकंड वन आई एम श्योर विल बी अनदर सुपरस्टार। बट यू नो व्हाट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देयर फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर। सो शी गेट्स इनटू दिस कैरेक्टर वेरी वेरी क्विकली। सो उनकी एक ट्रेनर, जी हाँ, जो कि एक इंटेंस एक्टिंग वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी उनके साथ में, उनका नाम है जयति भाटिया। दिस इज 2013 में जब गोलियों की रासलीला रामलीला वॉज बींग प्रिपेयर्ड, राइट? सो एक सीन में गालियों के लिए प्रिपेयर करना था, सो इंस्टेड ऑफ 7 डेज की ट्रेनिंग 4 दिन में उनको ट्रेन कर दिया और बोला कि भैया और इसको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, लड़की ट्रेन्ड है बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले कॉकटेल में उन्होंने परफॉर्म किया था, एंड कॉकटेल की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के बाद में एंड एब्सोल्युटली सुपर हिट के बाद में हर कॉन्फिडेंस वॉज एक्चुअली अमेजिंग। सो देन व्हाट हैपेंड, 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद में सिर्फ एक टेस्ट था, और वो टेस्ट था कि आप अपनी बालकनी में खड़ी हो जाएं और जैसे किसी के साथ नीचे के फ्लोर में, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, आप तीसरे फ्लोर से चीख चीख के बात करते हैं, उसी तरीके से गालियां देनी है। एंड इन्होंने ना आप देखा ना था, शी स्टार्टेड गिविंग द गालीज, और इनफैक्ट उनकी जो ट्रेनर है उन्होंने कहा इस तरह की गालियां इन्होंने दी जो मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। सो गेटिंग इन टू द कैरेक्टर, ऑसम, करना है तो ऐसे करो यार, टोटल फिट।
4: बरसात न जाया करो,
3: बरसात न जाया करो यार,
4: बरसात न जाया करो।
3: दिस इज लाइक समबडी डेस्परेट टेलिंग द गर्ल कि आके यार भीग लेते हैं साथ में, बरसात का पानी बेकार जा रहा है, व्हाई डोंट वी जस्ट शावर टुगेदर। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 इज गाना नंबर 14 कमिंग अप राइट नाउ, एंड इट इज ऑफ कोर्स मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका।
5: Trending song number 14.

0: बाय गॉड की कसम, बिल्कुल 90s का गाना लग रहा है ये। इस टाइम मैं यही सोच रही थी, एंड इट टर्न्स आउट दैट द वोकलिस्ट इज कुमार सानू।
1: मौसम यूं विदाना करो,
0: बरसात ना जाया करो, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, इट एक्चुअली साउंड्स लाइक अ गाय हु इज लाइक फुल ऑन टोटल बोल रहा है लड़की को, आ जा यार बारिश हो रही है, साथ में भीग लेते हैं, विल बी अ लॉट ऑफ मस्ती। एंड एक्चुअली व्हेन आई रेड अबाउट दिस गाना, इट इज बाय कुमार सानू एंड 90s का एवरग्रीन रोमांटिक रेन एंथम विच इज कैप्चरिंग अ लेट नाइट रेनी वेदर मेटाफॉर फॉर इंटिमेसी एंड फ्लीटिंग मोमेंट्स। जब किसी को ठरक नहीं बोलना होता ना तो वो बोलते हैं इंटिमेसी एंड फ्लीटिंग मोमेंट्स, समझ गए ना आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज रेणुका विद यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7, एब्सोल्युटली कीपिंग यू कंपनी टिल 8 इन द इवनिंग, एंड ऑफ कोर्स दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर,
3: चेक इट आउट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning.
8: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
9: Happy National Day, Singapore!
8: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: Trending song, number 13.

एंड क्रेडिट्स पे चलता हुआ ये वाला गाना, वेल इट हैज एक्टेड एज द थीमेटिक समरी ऑफ अ लव स्टोरी दैट स्पैन 78 ईयर्स अक्रॉस जनरेशंस। मैं वापस आऊंगा। आई थिंक दिस फिल्म इज ऑलरेडी ऑन OTT। आपने नहीं देखी है तो आई वुड से इट इज समथिंग वर्थ योर टाइम फॉर श्योर। एक बार नहीं, दो बार।

0: कमाल तो है ही भाई कि सनी देओल को पड़ रही है, वो भी देश के खिलाफ कुछ बोलने की वजह से। आई विल टेल यू अबाउट दैट गाइस इन जस्ट अ लिटिल बिट। लेकिन फिलहाल इतने इंटेंस गाने के बाद में थोड़ा सा रोमांस तो बनता है, और शाहरुख खान से बेहतर रोमांस किसके साथ हो सकता है। हमें तो वही चाहिए।
1: Musty Song of the Hour.

0: यार अगर इन लोगों की बात सच हो जाए, तेरी बाहों में मर जाऊं हम, या फिर कोई ऐसी बात कि भाई गुड़ खा के मर जाऊं, मतलब अगर वाकई वाकई बातों में इतना दम और इतनी सच्चाई होती तो सोचो कितने लोगों की बाहों में कितने लोग मरे हुए होते हैं ना, और कैसा होता, मतलब चीखें निकलती लोगों की।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: Okay, please don't judge me on this one. I know this was a terrible, terrible, terrible thing to say. And on Radio Musti 24/7, it's about 6:21 by the studio clock. And मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि भाई सनी देओल की क्लास लग रही है. जी हाँ, he is actually, there are lots of people who've gone against him because of one remark that he made. आप जानते हैं कि फ्राइडे को रिलीज हो रही है फिल्म कॉल्ड बटवारा 1947. इस फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे रिलीज हो रही है. ऑलराइट, सो दिस फिल्म ऑब्वियसली बाय द नेम ऑफ इट इज बटवारा 1947. इट इज बींग प्रोड्यूस्ड अंडर आमिर खान बैनर्स. एंड ये वाली फिल्म इज अबाउट बटवारा 1947. वाह, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट वन. ओके, लेकिन अब हाल ही में क्योंकि सनी देओल हैं इस फिल्म में, उन्होंने मीडिया के साथ में अपना मीटिंग्स करी और उसमें उन्होंने एक कमेंट मार दिया. मतलब क्यों बोलना है, मुझे तो ये नहीं समझ आता क्यों बोलना है. ठीक है, सो ही सेड कि मैं अपने पिताजी की बात करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र की. जी हाँ, द लेट आइकॉन धर्मेंद्र. एंड इन्होंने उनका एक स्टेटमेंट बताया कि बोला कि भाई क्योंकि भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान जो भारत में से ही निकल के आई है वो हमारी मौसी है. Why do you have to talk like that? क्यों क्यों बोलना है? He said my father used to say this. और उसके बाद obviously जो netizens हैं वो तो उनको तो मौका चाहिए. उन्होंने बोला if opportunism is an art then Sunny Deol is the artist. किसी और ने ये बोला, सारा Bollywood is like that. No exceptions. Have you seen recent interviews of Paresh Rawal? और बात सही है. धर्मेंद्र जी ने 21 फिल्म में ये कहा था कौन दुश्मन. जब उनसे पूछा गया था कि भाई आप जानते हैं ना दुश्मन, तो उन्होंने कहा कौन दुश्मन, बात हो रही थी पाकिस्तान की. अलग अलग चीजें. बॉबी देओल इज अ स्पाई गॉन रोग इन अल्फा. सनी देओल सेज पाकिस्तान मौसी है. मतलब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो सारे लोग उनके पीछे पड़ गए. उन्होंने बोला कि बात तो सही है, वैसे तो मम्मी की जो बहनें होती हैं दे आर ऑलवेज ट्रबल टू द किड्स. पीपल वेंट टू लाइक यू नो अपने दिल की भड़ास निकालने लगे रिश्तेदारों पे. बोला कि ये जो मम्मी की बहनें होती हैं ना, दे आर ऑलवेज लाइक रिलेटिव्स जो एक्चुअली बहुत ही स्टमक बर्निंग पीपल होते हैं. दे क्रिएट इशूज विद लैंड्स, विद प्रॉपर्टीज, और क्योंकि वो हमारे साथ डिवाइडेड होते हैं, टेक्निकली हमारे हैं तो सिबलिंग्स ही है पाकिस्तान, लेकिन वो वाले सिबलिंग्स जो हमेशा लड़ते हैं हमसे. And that is गान नंबर 12 कमिंग फ्रॉम द फिल्म अल्फा एंड फॉलोड बाय बिलीव इट और नॉट राणा जी 2.0 इज आउट देयर. I don't believe ये वाला गाना relaunch भी हो सकता था, मुझे तो ये पहले कभी याद नहीं था. But yeah, amazing, amazing. Radio Musti 24/7 पर सुनेंगे back to back गाना नंबर 12 और 11 and I'll be back with some more news and a lot more gossip. Stay tuned, guys. This is of course Musti Top Charts with Renuka.
1: Trending song number 12.

0: मेरे ख्याल से इस गाने को काफी काफी पहले बजना चाहिए था, और जब मैं कह रही हूँ पहले, दैट डजंट मीन कि मैं इस गाने को अब तक मिस कर रही थी। आई मीन कि ये जब टॉप 2019-18 पे बजेगा तो ये उसी स्पीड से बाहर भी जाएगा, राइट, फ्रॉम मस्ती टॉप चार्ट्स। गुड इवनिंग, इन केस यू एंजॉयड दिस गाना, फैंटास्टिक, इन केस यू डिडंट तो मुझे जरूर लिख के बताओ, ठीक है।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
0: Absolutely, you are gonna check it out. Why am I saying what I'm saying, guys? That is because Mamta Kulkarni is famous for this gana, which is Rana Ji. And the way she goes, mujhko Rana Ji maaf karna. Matlab, it is a total sensuous that she tried to be on that gana. And of course, this gana still retains the powerhouse original vocalist, that is Alka Yagnik and Ella Arun. Aur Tanishq Bagchi ka ye jo music hai, unhone isko totally revamp kar diya, adding the contemporary electronic beats to the original composition by Rajesh Roshan. And of course, at the same time, the visual presentation features, oi hoi, upscale sets hai, choreography hai Remo D'Souza ki, aur हमारे पब्लिक का क्या है? Well, पब्लिक के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, सेम लाइक मी। कुछ लिसनर्स टोटली एंजॉयड द अपबीट क्लब रेडी प्रोडक्शन, और मतलब क्लब्स में चल रहा है, पागल हो रहे लोग इस पे नाचते हुए। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने ये कहा, भैया 1995 की याद आ गई, ममता कुलकर्णी की याद आ गई, एंड द क्लासिक वर्जन का ट्रेडिशनल चार्म था वो तो अमेजिंग साइज में भी दिख रहा है। इनफैक्ट ममता कुलकर्णी ने खुद भी बोला है ऑन द रीमेक, नोटिंग दैट द ओरिजिनल रिमेन्स डीपली एच्ड इन पीपल्स माइंड्स, कि मुझे मत भूल जाना, नया गाना तो नया है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, यू नो। ये कहते हुए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हमें कहा है टू गाना नंबर 10। Alright, so इश्क कमीना, I don't know कब गाली देनी होती है रेडियो पर और कब नहीं देनी होती, अब गानों के नाम ही उस पे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। रेडियो मसी 24/7 पर Baby Do Die Do किट साउंडट्रैक से गाना नंबर 10 coming up right now, it's about 6:34 by the studio clock, and yes, this is Renuka with you.
1: Trending song number 10।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल ना हो।

0: And this gana is considered the high energy remake of the 2002 hit song from Shakti the Power. एकदम reimagine किया गया action thriller film Baby Do Die Do के साथ में और इसको premiere of course देखा गया in cinemas on July 3rd. Huma Qureshi and Sikandar Kher इस film को काफी appreciate किया गया है जी हाँ and the returning voices of course continue to be of Sonu Nigam and Alka Yagnik. Iconic indeed.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho. Bollywood Flashback.

0: प्यार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दोस्त को डेफिनेटली हमारे मोड पर लेकर आया ये वाला गाना। वेलकम वेलकम वेलकम जी डैंग साहब, की हाल चाल है तुहाडा? मैं तो बहुत मिस कर रही सी तुहानू, बहुत मिस कर रही सी। मैं की दसा,
1: बुझा दो।
2: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।

0: डोंट टेल मी यू गाइस डोंट हैव योर वॉल्यूम्स अप गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली सब साथ में बोलेंगे हाय, क्या बात है। रेडियो मौसी 24/7 पर जीते हुए मेरे सारे के सारे दोस्त आ गए इस गाने को सुन के, वाह मजा आ गया।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
0: Actually guys, if you go to ggmartonline.com, you will see कि बड़े ही मस्त मस्त वाली चीजें हैं, स्पेशली हेल्दी वाली चीजें। मतलब क्या कमाल के जाबुन बेस्ड एंड ऑफ कोर्स द नट्स एंड एवरीथिंग। जस्ट गो बिहाइंड द सीन्स गाइज एंड फिगर आउट कि व्हाई ggmartonline को हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर एंड व्हाई नॉट एनी अदर। सोचो सोचो। लेकिन फिलहाल ये सोचो कि आमिर खान, जी हाँ, उनका अगला कौन सा प्रोजेक्ट इस टाइम पाइपलाइन में है। नहीं नहीं, शादियां हो गई हैं इस टाइम के लिए, अब 16 साल रुक जाओ, उसके बाद एक और शायद। आई टोल्ड यू आई एम एट माई वेरी गॉसिपी बेस्ट ड्यूरिंग दिस शो, सो इसलिए प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। जो भी आमिर खान के लिए बहुत इमोशनल है, टू बैड। बट ललकारा की बात कर रही हूँ मैं। वेल, दिस प्रोजेक्ट कम्स राइट आफ्टर द सक्सेस ऑफ आमिर खान ब्लॉकबस्टर मूवी विच वॉज सितारे जमीन पर, एंड इट इज बींग रिपोर्टेड कि विक्रांत मसे, जी हाँ, उनको अप्रोच किया गया फॉर अ की रोल इन आमिर्स ललकारा। अब ये है एक स्पोर्ट्स टाइप की फिल्म, ऑलराइट, एंड ऑडियंस जो है उनका बहुत मन है कि भाई विक्रांत को आमिर खान के साथ में देखा जाए तो मजा ही आ जाएगा। एज इट इज, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। सिर्फ हाल ही में आई वॉज वॉचिंग दिस टीवी सीरीज, राइट, जो अभी अभी आया है, मुसाफिर कैफे, एंड मुझे ऐसा लगा दैट ही वॉज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर द यंगर सेल्फ, जो वो बनने की कोशिश कर रहे थे उसमें। ऑफकोर्स द मेच्योर्ड वाला जो लड़का है, जो कैरेक्टर है उसमें, ही वर्कड अमेजिंग, लेकिन जो वो यंगर वाला कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रहे थे, इट वॉज नॉट कमिंग वेरी नेचुरल, राइट। सो बिसाइड्स आमिर खान, मेकर्स जो हैं वो तीन और भी एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। सो अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आप भी आमिर खान को बोल सकते हो, हेलो प्लीज वन ऑफ देम कैन बी मी। विक्रांत मैसे को अप्रोच किया फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एंड ऑफकोर्स अब देखने की बात यह है कि विल वी लव हिम इन दैट और विल वी नॉट लव हिम इन दैट। वेल, ललकारा को प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का एक्सेल एंटरटेनमेंट, एंड राजकुमार हिरानी भी आ रहे हैं प्रोड्यूसर की तरह। सो वेल, फरहान, राजकुमार, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन हेल ऑफ एन अमेजिंग फिल्म। इतनी जल्दी आ गया ये वाला गाना, भेजो भेजो गालियां भेजो मुझे अब। और जो खुश है वो प्यार भी भेजना 9151893 एट राइट नाउ, दैट इज गाना नंबर 9।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 9.

आप में से कई लोगों को मेरे अंदर से इस समय बगावत की बू आएगी, लेकिन ठीक है, आने दो, मैं ये गाना नहीं निकाल सकती टॉप चार्ट से, मुझे माफ कर दो यार। Seriously, I'm in love with the gana. I can't help it. Every time I listen to it, I want to fall in love again. Ji haan, gehra hua. That means growing intense ya deepened. Bada hi soulful sa neoclassical sa romantic sa gana hai. Ye apni Dhurandhar film hai. Obviously, Arijit Singh ki awaaz hai, Arman Khan ki awaaz hai. Compose kiya Shashwat Sachdev ne. And lyrics likhe hain Irshad Kamil ne. Well, it's kind of an emotional, quiet counter melody to the film's gritty, action-heavy narrative. Aur ab jaante कि ये जो पूरा का पूरा गाना है ना, इट इज इन द बैकग्राउंड, मतलब ऐसा लगता है कि जो सोच है इंसान की वो धीरे धीरे, इट्स सिंकिंग स्लोली लेयर बाय लेयर रादर देन एन एक्सप्लोसिव या ड्रामेटिक डिक्लेरेशन ऑफ लव। तो उससे ये होता है ना यार कि मतलब एक एस्पियोनाज का प्लॉट है, वो कहते हैं कि भाई बड़ी हिडन टेंशन है, वो कहते हैं कि यार एक तरफ मेरी ड्यूटी है और एक तरफ आई एम सरेंडरिंग टू द अफेक्शन। जी हाँ, बहुत ही कॉशियस रहना पड़ रहा है, उस इंसान को प्यार होता जा रहा है, क्या करेगा वो इंसान, उफ बहुत ही मुश्किल। रेडियो मस्ती 24/7 पर हम कहेंगे कि वो इंसान कुछ नहीं करेगा, वो प्यार करेगा और यही होता है, लेकिन देश पहले आता है। और हमारे लिए क्या पहले आता है, गाना नंबर 8 जो कि अगला गाना है, सुने क्या। ऊंचा लंबा कद, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि सारे गाने मैं रीमिक्स करके चला रही हूँ। Why can't people be more creative and original nowadays? I hate it. Trending song number 8.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: यार एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, मतलब बाथरूम्स में से जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें से चीजें चुराई जाती हैं, मैंने सुना था, बट सीरियसली द बिडे जिससे कि आप वॉश करते हो अपने आप को पॉटी के बाद में, वो वाली चीज भी चुराई जाती है क्या? रेडियो मस्ती 24/7 इज मस्ती टॉप चार्ट्स, बट गाइज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में, जी हाँ, जहाँ हमारा स्टूडियो है वहाँ पर सारे के सारे टॉयलेट्स को रेनोवेट किया गया हाल ही में, ठीक है, सब कुछ नया बिल्कुल चिकना चिकना चमकता हुआ लगाया सब कुछ, ठीक है, बहुत जरूरत थी यहाँ के टॉयलेट्स को रेनोवेट करने की, सो आई एम ग्लैड दैट वॉज डन। लेकिन उसके बाद वहां पर हर टॉयलेट में एक नोटिस लगाया गया, प्लीज डू नॉट रिमूव और टेक द बिडे एज इट बिलोंग्स टू MCST एंड इफ एनीवन इज फाउंड डूइंग सो द मैटर विल बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। पहली बात तो कोई लेके क्यों जाएगा, और दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन इफ समबडी इज कॉट डूइंग सो, आपको कैसे पता लगेगा कि वो बिडे चुरा के ले गया। धक धक, गा नंबर 7 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, 7:02 यहाँ पर, और हमारा तीसरा घंटा है ये मस्ती टॉप चार्ट्स का। इफ यू थिंक कि जो हमारे फिलर्स वाले गानों में आपको कोई खास मस्ती गाना सुनना है तो हमको जरूर बताइए। सपना जी, आपका गाना नहीं चला रही हूँ मैं आज के दिन में, बहुत बड़ा ही रोंदू है वो मिर्जा गाना, मैं नहीं चला पाऊंगी, वो अंतरा चलाएगी मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में मंडे को, प्रॉमिस, बिल्कुल आई विल मेक श्योर वो चलाए।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: Trending song. Number 7.

0: धक तो मेरा दिल कर रहा था. यू नो व्हाट हैपेंड गाइस, आई हैव टू टेल यू समथिंग. यहाँ पे मेरे ऑफिस में इस समय सब लोग हंस रहे हैं मेरे पे. क्यों? बिकॉज आई हैव डन समथिंग विच इज लाइक प्रिटी फनी. तो हुआ कुछ ऐसा दैट वी हैव बीन वर्किंग विद समबडी, ओके, अ कंपनी, और उस कंपनी के साथ में काम करते हुए अभी मतलब बहुत टाइम हो गया हमें. लेकिन पिछले कुछ दिनों तक क्या हुआ कि हमने उनके साथ काम करना थोड़ा सा पॉज कर दिया था. तो जब हमने उनको ढूंढने की कोशिश करी तो मैंने ईमेल पे लिखा, जितने भी लोग थे उसमें मैंने ईमेल पे लिखा, ईमेल का जवाब नहीं आया 2-3 दिन. तो मैंने फिर उनको व्हाट्सएप पे लिखा और कहा कि हेलो आप कहाँ हो. तो उन्होंने ये कहा, जो मेरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थी, उन्होंने कहा आई एम नॉट वर्किंग विद द कंपनी एनीमोर. सर ओके ठीक है. मैंने पूछा वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, शी सेड नहीं, उन्होंने भी जनवरी में छोड़ दिया. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. उसके बाद क्या हुआ, मुझे रियलाइज हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 8-10 लोग थे. तो मैंने उसमें देखा तो बहुत सारे लोग निकल चुके थे उसमें से. देन आई डिसाइडेड टू राइट अ मैसेज इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, हेलो इफ एनीबडी इज स्टिल वर्किंग विद दिस कंपनी देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी अर्जेंटली. और उसमें मेरे अपने ऑफिस के भी 1-2 लोग हैं, उनका ये कैसा मैसेज है. आई सेड जब मैं जिससे बात कर रही हूँ द पर्सन इज मिसिंग, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में अब कोई काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. सो लेट्स बी ओपन ना, टाइम क्या वेस्ट करना.
1: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा.
0: And that is गाना नंबर 6 coming up next after this beautiful retro that I'm going to play. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये धक धक करने लगा माधुरी दीक्षित, the धक धक girl. She's made some amazing money हाँ recently on her real estate investment. जी हाँ, उन्होंने बेचा है अपना commercial office space in Mumbai 4.85 crore, that means 4.85 crores में. And of course इन्होंने खरीदा था 18 साल पहले 52.5 lakh rupees में. So it has been 9 times the price that she bought it for. अब आप सोचिए, commercial office space बेच दिया, माल किया अंदर और धक धक तो करेगा ही ना जिया. Good evening everyone.
2: It's time for
3: Musty Song of the Hour.
2: Song of the Hour.

अजनबी हसीना का तो पता नहीं, लेकिन हमारे एक दोस्त जो अजनबी बन गए थे उनके साथ दोबारा से मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है। आशुतोष राय जी, आपको गए हुए जमाना बीत गया। हमें याद है कि हम 3 घंटे के स्टेशन में आपसे खूब बातें किया करते थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? आप वही वाले आशुतोष राय हैं जो मुझे बहुत तंग किया करते थे संडेज को। वेलकम बैक, सीरियसली इट इज सो गुड टू टॉक टू यू अगेन, फैंटास्टिक, वेलकम टू मस्ती 24/7, वाओ।

0: ऑलराइट रेडियो मस्ती 24/7 यहाँ पर चैटिंग करते करते मैंने सडनली रियलाइज किया, ओ माय गॉड, गाना तो खत्म हो गया है। यहाँ पर मैं आशुतोष राय जी से बातें कर रही थी, क्योंकि ये ना उस समय पे बहुत सारी शेर व शायरी भेजा करते थे मुझे, और मुझे याद है संडे के दिन में काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में बातें होती थी, राइट, एंड दैट वॉज मेनी मेनी ईयर्स अगो। खैर मेरी उम्र तो वहीं की वहीं है आशुतोष जी, आप कितनी उम्र में बढ़ गए हैं ये बताइएगा मुझे ज़रूर। रेडियो मस्ती 24/7 रेडियो का विद यू, एंड ऑफकोर्स दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। आर माधवन ने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है, अरे यार बताऊंगी जल्दी क्या है।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song. Number 6.

एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द गुलाबी साड़ी गाइस, आप बताइए आज गाना नंबर एक कौन सा होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू टेल मी, और मैं लास्ट मिनट में बदल दूंगी। अगर आप में से किसी ने जवाब सही दे दिया तो आई विल चेंज टू अनदर गाना। तो इन एनी केस आज किसी को नहीं पता लगेगा कौन सा गाना है। रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज योर गर्ल रेनू का 7:15 और 45 सेकेंड।

0: I tell you, तौबा तुम्हारे ये इशारे, उफ, चलते चलते का ये जो साउंड ट्रैक है ना यार, हर बार सेंटी मार देता है यार. अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक ऑफ कोर्स, एंड शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी ऑफ कोर्स. और यहाँ पर मेरी जो बातें चल रही हैं सब लोगों के साथ में, आई एम एब्सोल्युटली लविंग आज का मौसम और आज का ये शाम. एब्सोल्युटली इन लव विद इट गाइज, एंड एब्सोल्युटली इन लव विद यू गाइज, जो मेरे साथ इतने प्यार से बातें करते हो और बीच बीच में जब मैं कहती हूँ गालियाँ देनी है तो लिख देते हो गालियाँ. अरे गालियाँ देने का मतलब है कि जो गालियाँ मन में आ रही है वो वाली, ये नहीं कि वर्ड गालियाँ लिख दिया. अब मैं कुछ भी समझू उसमें, राइट.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.
0: All right, so आगे बढ़ते पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक और बात कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित ने कुछ कुछ पैसे खर्चे हैं, कमाए हैं, और खर्चे थे 18 साल पहले, कमाए आज के दिन में. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट शी इज मेड. एंड बात करनी थी मुझे आर माधवन की. कैन यू बिलीव इट गाइज, द गाय हैज revealed उसका most expensive purchase. आपको याद है हाल ही में he was wearing that घड़ी when he went to the राष्ट्रपति भवन, and everybody thought, hey, this is one of those very limited editions घड़ी जो उसने पहनी हुई थी. And now of course he said, नहीं नहीं नहीं, that wasn't the most expensive. This is the most expensive purchase. And आप सोचिए, he says, मैं show off नहीं कर रहा हूँ यार, मैं seriously बता रहा हूँ, मेरी एक ही जिंदगी में long standing personal dream रहा है, and that is to earn a captain's license. So he has bought a yacht, and the yacht is docked in Dubai. क्योंकि Dubai is one place जहाँ पर सारे सारे हमारे Bollywood के जो hero heroines हैं अपनी सारी तमन्नाएं वहाँ जाके पूरी करती हैं. Even Tamanna goes there, right? So bad joke. But हुआ कुछ ऐसा कि इनकी luxury possession में of course ये वाली जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया है. And हमारे R Madhavan ने कहा कि भाई मैं ना जब से COVID-19 हुआ ना तो मैंने ना बिल्कुल सर्टिफिकेशन कर ली, मैंने 6 महीने में वो काम अपना ख़त्म किया और लाइसेंस लिया, और उसके बाद मैंने यॉट खरीद के अपना जो एक मेरा जिंदगी का एक सपना था वो पूरा किया. इज़न्ट दैट अमेजिंग गाइस? आई थिंक रेडियो मस्ती 24/7 पर इस समय मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी विश है, ऐसी तमन्ना है, तो बस उसको अंदर ही अंदर मारिए मत. कम ऑन, लिव इट या जस्ट ट्राई टू अचीव योर गोल्स, जस्ट ट्राई टू लिव योर ड्रीम्स, और नो रिग्रेट्स के साथ में इस दुनिया से जब भी हम जाएंगे ना, खुशी खुशी जाएंगे कि मेरे पूरी की पूरी बकेट लिस्ट हो चुकी है चेक, और अब चलते हैं दूसरी तरफ घूमने.
2: काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा.
0: ऑलराइट, दिस इज गाना नंबर 5 प्लेइंग नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: रूप दियो रानी तू परांदे को.
0: कौन सी फिल्म है पति पत्नी और वो दो? और यहाँ पे जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, वेल आई मस्ट टेल यू दैट हमारे जो बहुत पुराने सुनने वाले आशुतोष जी हमारी जिंदगी में आज ही वापस आए, इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड. कह रहे हैं कि महादेव की कृपा से सच बोलूँ तो मिलकर बहुत अच्छा लगा है फिर से एक बार मस्ती और रेणुका जी दोनों को. मैंने कहा महादेव जी को बीच में लाकर परेशान मत करो यार, मतलब टॉप चार्ट चल रहे हैं, सुनते हैं साथ साथ गाना नंबर 5.
1: Trending song number 5.

एंड ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं शान और सुनिधि चौहान की आवाज. व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक तारारम पम के साउंड ट्रैक से. अ वेरी रोमांटिक गाना इंडीड. बज रहे हैं शाम के 7:33 एंड आई फील इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग टाइम फॉर मी टू से गुड बाय. लेकिन 4 गाने बाकी हैं, आपने बताया नहीं कौन सा होने वाला है.

0: is one guy I enjoy speaking with at any point of time is Shaan. एक तो उनकी जो smile है ना, I think आधे ज़्यादा उनका पौना जो चेहरा है वो smiley smile है, ठीक है ना? So बाकी का जो 1/4 चेहरा है उनका, उसमें आँखें, नाक, सारे features आ जाते हैं, लेकिन 3/4 of his face is only the smile, and that is what brightens when I try to talk to him. जितनी बार भी मेरी उनके साथ में interviews ये वो हुआ है, I think he's just amazing and he has a good sense of humor and he's a very grounded, humble kind of a guy. So that is what I love about him. वैसे सिर्फ वही नहीं, मुझे सारे लोग जो ऐसे हंसते रहते हैं मेरी जिंदगी में भी, कोई गंदी बातें नहीं बोलते, you know, मुझे कोई ऐसे बुराइयां नहीं करते मेरी, जैसे अभी अभी एक मेरे जो लिसनर है मेरे साथ कर रहे हैं आदित्य, कह रहे हैं कि तुम रिटायर हो जाओगी, तुम तो तुम्हारी तो उम्र बढ़ जाएगी, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं. ऐसे थोड़े होता है, मतलब ऐसे कोई बोलता है क्या किसी को? हाँ, मतलब क्या है ये?
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: अब मन करता है ऐसे लोगों के साथ लड़ाई करो, पर क्या करें ना, मुझे अपने सारे लिसनर्स पसंद है, चाहे वो जितने गंदे लोग हों. Radio Musti 24/7. Well, this is exactly what I love, the relationships that we make on air. चाहे एक दूसरे की शक्ल कभी देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन जब भी कहीं गलती से भी मिल जाते हैं तो कहते हैं हा हा हा, we start from that part because we know each other so well because of this amazing medium that is the radio. Well, पता है क्या, अब इससे आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ आपको कि रेडियो को जान छोड़ो और OTT की बात सुनो कि भाई डिजिटल इज द वे, राइट? तो आपको क्या करना है, 5 ऐसी फिल्में जो कि थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं या फिर OTT पर रिलीज हो रही हैं इस हफ्ते, उसके बारे में बताना चाहती हूँ. कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था ओ माई डॉग, जिसमें पंकज त्रिपाठी हैं, वो तो सिनेमाज में होने वाली है, जी हाँ, कल ही के दिन में रिलीज हो जाएगी. आर्यभट्ट का जीरो, दैट्स दी अदर फिल्म, हिमांश कोहली, सोनाली सेगल, शिल्पा शिंदे, रवि किशन, दर्शना बानेक, नीरज सूद, जी हाँ, ये सारे लोग हैं, ये भी कल ही के दिन सिनेमाज में रिलीज होगी. एंड देन देयर इज मैं वापस आऊंगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना दैट आई थिंक आई सॉ इट रिलीज ऑन OTT, एंड यस, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है ये वाली फिल्म ऑलरेडी, कल के दिन में आप देख सकते हैं उसको. ऑपरेशन सफेद सागर, दैट इज ऑल्सो ऑन नेटफ्लिक्स, एंड दिस हैज सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दैट आई एब्सोल्युटली लव, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, दिया मिर्जा एंड अ फ्यू अदर्स. देन देयर इज अ फिल्म कॉल्ड प्रहार, अगर आपको नहीं पता था, तो वामिका गाबी एंड राजकुमार राव एंड जयदीप अहलावत. दिस फिल्म इज गोइंग टू बी इन सिनेमाज आल्सो स्टार्टिंग टुमारो. सो बड़ा ही बिजी है आपका ये लॉन्ग वीकेंड, आई कैन प्रॉमिस यू दैट. लेकिन फिलहाल के लिए चटनी, जो कि पता नहीं 11वें नंबर पर बन रही थी पिछले हफ्ते, थैंक्स टू अनदर जॉक हु स्टेप्ड इन टू डू दिस शो, मैंने उसको 4 नंबर पर ले आई हूं मैं.
3: दैया कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
0: ऑलराइट, दैट इज नंबर 4 गाइस, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द गाना नंबर 1, बट आई कैन टेल यू नंबर
3: 3.
0: मैं वापस आऊंगा कि साउंड ट्रैक से. I love that. Sunte saath saath, and of course, I'm right here till 8 in the evening.
1: Trending song number 4.

एंड इस गाना मैं वापस आऊंगा, इसमें आई लव वेदांग रैना की आवाज। अभी आप सुनेंगे उसको, ए आर रहमान का म्यूजिक है, इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं एंड इम्तियाज अली डायरेक्टर। व्हाट एन अमेजिंग फिल्म गाइस, कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी, जरूर देखिएगा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 किसी ने भी गेस नहीं किया आज गाना नंबर एक कौन सा होने वाला है, और इसीलिए मेरी आवाज में
1: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
0: You know what I'm feeling is a little bit of gloomy atmosphere around hamare listeners aaj ke din mein. In fact, it has rubbed off on me also for a little bit. But Radio Musti 24/7 par guys, I just want to tell you one thing ki 17 saal ho rahe hain is saal humko mujhe on Radio Musti 24/7 matlab 24/7 ke 10 saal aur usse pehle 7 saal. Aur aap jante hain ki itne log aaye, itne log gaye, because Singapore is like a place which is a transit hub, right? So bahut sare log आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से, और कितने सारे दोस्त बने, कितने सारे हमें भूल गए. थैंक्स टू सोशल मीडिया, अ लॉट ऑफ देम केम बैक एंड कनेक्टेड विद अस, एंड आज भी कहीं भी हैं दुनिया में वहाँ से हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत सारे लोग. एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ द होल सिचुएशन इज कि हम एक ऐसा ब्रिज बन गए हैं कम्युनिटी के लिए कि कहीं भी आप लोग होते हैं हम आपके साथ जुड़ के रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं आप हमारे पास ही हैं. लेकिन कई बार कुछ कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो सीरियसली हम सोच ही नहीं सकते कि वो कभी दूर जाएंगे हमसे, लेकिन जब ऐसी बात होती है ना तो दिल बिल्कुल ही उदास सा हो जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू से मोर देन व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी, लेकिन टू ऑल दोस पीपल हु आर प्लानिंग टू और हु आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम अस और थिंक दैट या वेयर एवर दे विल बी इन टच विद अस, द थॉट इज ब्यूटिफुल, बट वी डू विश लाइफ वॉज नॉट दैट हार्श, राइट? इसी बात पर एक बढ़िया सा गाना और दोस्ती के नाम हो जाए यहाँ पर. बट उसके बाद अगर आपने नहीं बताया गाना नंबर एक कौन सा है तो मैं फटाफट बता के भाग जाऊंगी, ठीक है ना? रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू.
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

अरे यार क्या सेंटी कर दिया आप लोगों ने. बट यू नो व्हाट, यहाँ पर जितने भी लोग मुझे अब समय लिख रहे हैं कि रेणुका में टॉप चार्ट सुनने का इतना शौक नहीं होता जितना आपके साथ बातें करने का होता है, एंड दैट इज सो स्वीट ऑफ यू टू से थैंक यू. और मैं भी इसीलिए आती हूँ, मैंने लड़ झगड़ के शाम का एक शो रखा है इसीलिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विद ईच वन ऑफ यू. मेरी दिल की ये दुआ है. पार्टिंग इज ऑलवेज सो डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे इंसान समझता है कि इसके पीछे भी कोई खास

ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी. आई होप आप कहीं भी जाएंगे आप हमें भूलेंगे नहीं, एंड टाइम टू टाइम हमें तंग करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ट्यून इन करते रहेंगे और अपना हाल बताते रहेंगे और हमारा हाल पूछते रहेंगे.

जैसे कि ऑलरेडी हम इतने सेंटी नहीं हुए कि अब इसका सेंटी वाला पार्ट भी सुनना पड़ेगा हमको। रेडियो मसी 24/7, इट्स किशोर कुमार ऑन द वोकल्स, दोस्ताना एंड ऑफ कोर्स तेरे जैसा यार का, डेडिकेटेड टू ऑल दोस पीपल दैट वी हैव कनेक्टेड विद ओवर द इयर्स एंड ऑल दोस पीपल हु आर मूविंग टू ग्रीनर पास्चर्स फ्रॉम सिंगापुर। वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हम कहते हैं कि भाई जब बड़े आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना, हम वहीं के वहीं हैं।

एंड ऑन दैट नोट लेट्स नॉट फॉरगेट मेरा यहाँ पर काम क्या है. वेल मेरा काम है आपको गाना नंबर दो और गाना नंबर एक के साथ में रूबरू कराना. एंड ऑल द मशूकास आउट देयर कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से ये गाना. एंड द अदर गाना इज Alright, we've got equal number of people saying ये भी वो भी वो भी ये भी. So, आज के दिन कोई नहीं जीता और मैं जीत गई क्योंकि मैं कोई भी गाना चला सकती हूँ ना अब तो. Radio Masti 24/7 is Renuka signing off from of course the studios of Radio Masti 24/7 and from Masti Top Charts this evening. I had a lot of fun guys. It's the 6th

0: कभी कभी मन पराया है कि जैसे तुझको बनाया
1: झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल
0: कि जैसे तुझको बनाया गया।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल्स।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बच्चे मर जाओ।

0: आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब अपनी जिंदगी में वी कैरी कॉन्वर्सेशंस जो शायद कभी होती नहीं है, ऐसी कॉन्वर्सेशन जो हमारे पेरेंट्स के साथ हम करना चाहते हैं लेकिन हम पोस्टपोन करते रहते हैं, अ क्वेश्चन दैट वी ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क आवर पार्टनर लेकिन वो सही मौका ही नहीं मिलता, एक ऐसा डर दैट वी जस्ट स्माइल थ्रू, अ ड्रीम दैट वी क्वाइटली बरी, या सिंपली अ थॉट दैट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन आवर माइंड्स। इसीलिए तो ये शो एग्जिस्ट करता है। डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। और ये शो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारे पास आपकी सभी बातों का जवाब है। बट बिकॉज समटाइम्स पुटिंग योर फीलिंग्स इनटू वर्ड्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग देम। पिछले कुछ हफ्तों से हमको आपकी चिट्ठियां मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, एंड रियली दे've मेड अस रिफ्लेक्ट एंड समटाइम्स दे've लेफ्ट अस स्पीचलेस, क्योंकि हर ईमेल, हर मैसेज के पीछे देयर इज अ रियल पर्सन लिविंग अ रियल लाइफ ट्राइंग टू मेक द बेस्ट डिसीजंस दे कैन, एंड मे बी दैट्स ऑल एनी ऑफ अस आर डूइंग। आज की चिट्ठियां भी कुछ अलग नहीं है। We'll talk about relationships that have changed over time, dreams we still hope to fulfill, the changing dynamics of family, the fear of growing older, and those quiet thoughts and we often keep hidden behind a smile. If you've ever found yourself thinking, I wish I could ask someone this, then this is your space. Hame likhiye, because your question may become someone else's answer. मैं हूं रेणुका आपके साथ और शुरू करें क्या डियर मस्ती दिल से। वेल, अब क्या कहें, जिंदगी की बात हो रही है और जिंदगी में तो कभी हार कभी जीत, कभी स्माइल्स कभी दुख, सब कुछ चलता है, राइट?
1: जिंदगी की यही रीत है,
0: तो क्यों ना शुरू करें इस गाने के साथ।
1: जीत है।
0: थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, गम है तो उसके बाद है खुशी, है ना? चलिए सुनते हैं गाना, वापस आते हैं और आज की पहली चिट्ठी, जी हाँ बिल्कुल, पढ़ते हैं आप और हम। दिस इज रेणुका विद यू, स्टे ट्यून्ड, डियर मस्ती दिल से।

0: तो आज की पहली चिट्ठी हो जाए. डियर मस्ती, माय सिबलिंग्स एंड आई वर इनसेपरेबल ग्रोइंग अप. वी शेयर्ड एक ही कमरा, एक टेलीविजन, एक प्लेट ऑफ फूड समटाइम्स एंड वन चाइल्डहुड. वी लाफ्ड एट सिली जोक्स, फॉट ओवर द रिमोट एंड प्रोमिस्ड दैट वीड ऑलवेज स्टे क्लोज. आपको भी फेमिलियर लग रहा है ना? मुझे भी. No filters, no judgment, just your letters. Dear Masti, Dil Se. Welcome back, Radio Masti 24/7 पर रेनुका आपके साथ है. आज की पहली चिट्ठी कुछ siblings के बारे में है. और आज हम अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में सेटल्ड हैं. जॉब्स हैं, मैरिज है, चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड समवेयर अलोंग द वे डिस्टेंस क्वाइटली एंटर्ड आवर रिलेशनशिप. अब हमारी कॉन्वर्सेशंस आर मोस्टली अबाउट फैमिली फंक्शंस और प्रैक्टिकल थिंग्स. समटाइम्स मंथ्स गो बाय विदाउट अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन. छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बड़ी हो जाती हैं देन दे शुड. ईगोज हैव क्रेप्ट इन एंड आई मिस अस. आई मिस लाफिंग द वे वी यूज्ड टू. आई डोंट इवन नो हाउ वी बिकेम स्ट्रेंजर्स व्हाइल स्टिल बीइंग फैमिली. कोई तरीका है वापस टू फाइंड आवर वे बैक? कितना जेन्युइन सा है ना ये लेटर. ऐसा नहीं लगता कि कोई मिस कर रहा है और काफ़ी एफर्ट्स कर चुका है, या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा एफर्ट करे जिससे कि केओस ना हो और आपस में टेंशन नहीं हो, लेकिन दोस्ती दोबारा से वैसी वाली हो जाए जो पहले थी. और भाई बहनों के बीच में तो डिस्टेंस वैसे भी ख़त्म होते पता ही नहीं लगता है ना. रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे हम, लेकिन इस गाने के बाद जल्दी से आके आपसे मिलूंगी.
1: तेरा यार हूं मैं.
0: अरे इस गाने ने ही सोल्यूशन दे दिया.
1: तेरा यार हूं मैं.
0: जाओ और बोल दो यार. बट हैंग इन देयर. आई एम गोना कम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड गिव यू एग्जैक्टली अ स्टेप बाय स्टेप गाइड देती हूँ, ठीक है, कि क्या करना चाहिए. स्टे ट्यून्ड.

0: जीवन की।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका हमारा फेवरेट शो, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। जी, बिकॉज रेडियो पर बैठा कभी कभी एक अनजाना इंसान आपकी बातों को दुनिया वालों से बेहतर समझता है, और ये इंसान जो है ना इस टाइम चिट्ठी पढ़ चुका है अबाउट सिबलिंग्स, उनके बीच में डिस्टेंस और कोई भी बचपन वाली बात ना रहना। सो दिस सिबलिंग हैज रिटन टू मी एंड सेड, क्या वो टाइम वापस आ सकता है? यू नो व्हाट, दिस लेटर विल टच मेनी हार्ट्स टुडे, बिकॉज सिबलिंग्स हमारे पहले दोस्त होते हैं, राइट? द फर्स्ट फ्रेंड्स, पीपल हु न्यू अस बिफोर द वर्ल्ड डिड। बट हियर समथिंग लाइफ टीचेस अस, चाइल्डहुड कीप्स अस टुगेदर नेचुरली, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं यार। एडल्टहुड रियली डज नॉट कीप अस नेचुरली क्लोज। एज चिल्ड्रन वी शेयर अ होम, एज एडल्ट्स वी शेयर मेमोरीज, एंड समटाइम्स वी अज्यूम कि वो वाली जो मेमोरीज है ना वो अपने आप ही रिश्तों को अलाइव रखेंगी। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट। रिलेशनशिप्स नीड एफर्ट एट एवरी एज, चाहे भाई बहन हो चाहे कोई और। मे बी आपके सिबलिंग्स बदल गए हैं और मे बी आप बदल गए हैं। लाइफ हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ यू, राइट? डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट प्रेशर्स, पर इसका ये मतलब थोड़े ही है कि सिबलिंग्स का प्यार आपस में खत्म हो गया है। कभी कभी इट्स सिंपली हिडन बीनीथ लाइफ नॉइज। अगर आपको इंतजार है उस परफेक्ट मोमेंट का या फॉर समवन एल्स टू मेक द फर्स्ट मूव, तो करो इंतजार, बैठे रहो। लेकिन आप बन सकते हैं द फर्स्ट वन टू कॉल, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, बट बिकॉज द रिलेशनशिप मैटर्स मोर देन बीइंग राइट, है ना? एक पुरानी फोटो भेज दो, एक चाइल्डहुड मेमोरी भेज दो, अरे यार चाय के लिए मिल लो, टॉक अबाउट समथिंग अदर देन प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट ईच अदर। और एक दिन पता है क्या होगा, वी वॉन्ट रिमेंबर हु कॉल्ड फर्स्ट, वील रिमेंबर दैट वी स्टेड कनेक्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपका चाइल्डहुड शेयर किया है, दे कैरी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी दैट नोबडी एल्स एवर विल। इसीलिए टाइम को उनको आपसे चुराने मत दो, ओके?
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
1: एग्जैक्टली, जिसका नाता आपका पहले से है उसको ऐसे कैसे यार जाने दोगे? कम ऑन, पिक दैट फोन अप एंड टॉक अबाउट समथिंग, ऑलराइट? आई एम श्योर सिबलिंग्स का प्यार आ ही जाएगा वापस, छोटा सा एफर्ट करके तो देखो।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: ऐसा होता है जब हमें सल्यूशन आसपास के इंसानों में नहीं मिलता तो हम वही सल्यूशन इंटरनेट पे पाने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब का जवाब मिल जाए तो हम बार बार बार बार बार बार यही करते रहते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ाव के साथ इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलिए और जब रियलिटी फेस करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना लाइफ में और रिश्तों में कितना इम्पॉर्टेंट है ना। फिलहाल अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है उन्होंने मुझे लिख भेजा है कि डियर मस्ती दिल से, मैं अपनी हर लाइफ की जो दिक्कत है ना वो गूगल कर लेता हूँ और जो जवाब मिलता है उसे ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेता हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि हर चीज इस फॉर्मूले से नहीं चल सकती, सो व्हाट शुड आई डू। और मैं इस एज में हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आई एम अ वेरी बैड डिसीजन मेकर। सो देखिए जिन्होंने मुझे ये लेटर लिखकर भेजा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप एक अच्छे या बुरे डिसीजन मेकर है ये तय करने वाले आप खुद कौन होते हैं। सबसे पहली बात, डिसीजन मेकिंग में अगर आपको सच में किसी की मदद चाहिए ना तो सबसे पहले खुद की मदद लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलतियां होंगी, पर टेस्ट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा ना। हद मार के 10 से 15 गलतियों के बाद आप सोल्वी तो सही चीज करोगे, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ये इंटरनेट पर या किसी तीसरे इंसान पर जो डिपेंडेंसी है, जो आपने मुझे खुलकर नहीं बताई है, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके लिए आपको अपने सारे डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा और पहले ही मानना पड़ेगा कि आप एक बहुत अच्छे नहीं ठीक ठीक से डिसीजन मेकर हैं।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
3: Did you know one of Kishore Das' most popular songs,
7: Paanch Rupaiya Bara Aana,
3: was inspired by a debt that he owed to a college canteen in Indore. Radio Masti 24/7 Live celebrates Kishore Kumar's melodious voice and timeless tracks on his birth anniversary.

यू नो व्हाट, एक बहुत खूबसूरत सा कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि हार्ड वर्क कैन बीट अ स्मार्ट वर्क, एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है. और मुझे तो लगता है कि हार्ड वर्क जो है ना, बड़े से बड़े टैलेंट को भी बीट कर देता है, राइट? एनीवेज, मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ बनी हुई है. तो देखो, काम करना हमारे हाथ में, कितनी शिद्दत से, कितनी कंसिस्टेंसी से और कब तक हम काम कर रहे हैं, ये भी हमारे हाथ में है. ऑलराइट, सो डेफिनेटली इसी कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करके मेरे हाथों में जो लेटर आ चुका है उसमें क्या लिखा है, चलिए बताती हूँ. हेलो डियर मस्ती, कभी कभी जब किसी काम में ज्यादा मेहनत कर लेती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम मुझसे होता ही नहीं, और लाइफ की जिस सिचुएशन को मैं फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ वो काम अच्छे से हो जाता है. तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए, बताओ यार क्या करूं? आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि सच में अगर फॉर ग्रांटेड ले लें तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. बट द पॉइंट इज कि ये जो तुक्का है ना, ये हर बार नहीं लगेगा. हाँ, कई बार आप बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी उस काम को

काम करने के लिए मेहंदी होता है, तो वो आपकी जो हैबिट्स है ना वो खराब हो जानी है। तो लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का। बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत मोड़ों के साथ मैं आरजे नूपुर डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है,
1: कह

वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से। यस, अभी तक आपने रेणुका का साथ दिया, नुपुर का साथ दिया और अब मेरी बारी है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मेरी जो अगली चिट्ठी है यहां पर वो कुछ ऐसा कहती है, डियर मस्ती, मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ, गुड टाइम्स हो या बैड टाइम्स, लोग जब भी मुझे याद करते हैं मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन जब मुझे किसी की जरूरत होती है तो लगता है कोई भी नहीं है, बस मैं ही अकेली हूँ। कभी कभी सोचती हूँ हर किसी के लिए इतना करने के बाद भी मैं इतनी अकेली क्यों फील कर रही हूँ। और उससे भी बड़ा सवाल, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं बिना बुरा बने। माय डियर लिसनर, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट अलोन। और पता है आपका लेटर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा जैसे मैं अपने ही कुछ साल पुराने वर्जन से मिल रही हूँ, वही अंतरा जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी, जो हाँ बहुत जल्दी बोल देती थी और ना उसको बोलना आता ही नहीं था, जिसके पास बाउंड्रीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और जो बहुत बार सबके बीच होते हुए भी अंदर से बहुत लोनली फील किया करती थी। तो अगर आप आज ये फील कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है रेडियो के दूसरी तरफ जो भी सुन रहे हैं यही कह रहे होंगे कि ये तो आई थिंक आई कैन आल्सो काइंड ऑफ रिलेट टू इट। पता है लाइफ एक अजीब तरीके से हमें सिखाती है, वो हमें एकदम से बड़ा लेसन नहीं देती, वो पहले हमें हिंट्स देती रहती है छोटे छोटे। हर बार जब कोई आपकी काइंडनेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, हर बार जब आप हर्ट होते हो, हर बार जब आप रात को ये सोचते हो सोते हुए कि सबके लिए तो मैं हूं और मेरे लिए कौन है, लाइफ शायद उसी वक्त धीरे से कह रही होती है अब कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी वैसे ही वी कीप ऑन गिविंग, फिर वैसे ही ओवर गिव करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अच्छा इंसान होने का मतलब हर वक्त अवेलेबल रहना है हर किसी के लिए। लेकिन माय डियर लिसनर, एक लाइन ने मेरी ना जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल दिया एंड आई विल शेयर दैट विद यू। इफ यू कीप पोरिंग वाटर फ्रॉम योर ओन ग्लास इनटू एवरीवन एल्सेस, बिना देखे कि उनका ग्लास ऑलरेडी फुल है या नहीं, तो एक दिन आपका ग्लास खाली हो जाएगा और जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था वो किसी के काम भी नहीं आएगा। और शायद यही हमें भी सीखना पड़ता है, कब देना है और कब रुक जाना है। मैं अभी आंसर यही खत्म नहीं करने वाली हूँ, ब्रेक के बाद लौटकर आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या बदला और कैसे धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता है, शायद वही असली काइंडनेस होती है खुद के लिए भी। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
0: Welcome back to Dear Masti Dilse on Radio Masti 24/7 Live. As promised, बिल्कुल musical break के उस पार हाजिर हो चुकी हूँ मैं. और just in case आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारी एक dear listener ने हमें लिखा था कि वो हर किसी के लिए available रहती हैं, सबके लिए वक्त निकालती हैं, सबकी problem सुनती हैं. लेकिन जब उन्हें किसी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें लगता है कि उनके पास कोई नहीं होता. Her question was, boundaries कैसे set करें, no कैसे बोलते हैं. So my dear listener, मैं ना आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ. I have been exactly where you are. So कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने सिर्फ दो चीजें सीखी. नंबर वन, हैविंग बाउंड्रीज इज हेल्दी. और नंबर टू, लर्निंग टू से नो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू से नो. बस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. देखिए, मैं आज भी वैसी ही एकदम काइंड हूँ. मैं आज भी लोगों की हेल्प करती हूँ, और मुझे लगता है आपको भी ये क्वालिटी जो है कभी नहीं बदलनी चाहिए. विच इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. प्लीज डू नॉट डू इट. ओके, दुनिया को और काइंड लोगों की जरूरत है. लेकिन एक छोटा सा ट्वीक जरूर करिए. काइंड रहिए, लेकिन लिमिटलेस मत बनिए. मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ. मेरी एक दोस्त है, थी, है, पता नहीं, बट है. चलिए, जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती, सबसे पहले फोन मुझे आता. मैं उसकी बात सुनती, टाइम इन्वेस्ट करती, उसके लिए भागती इधर उधर, फॉलो अप करती तो ठीक है कि नहीं, खुद मैसेज करके पूछती और कुछ है, मैं और क्या कर सकती हूँ तेरे लिए. कभी कभी तो मुझे लगता था कि बाकी लोग भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे और उसकी हेल्प करनी थी. मुझे लगता था जितना ज्यादा मैं दूंगी, मैं उतनी ज्यादा अच्छी दोस्त बनूंगी उसकी. लेकिन एक दिन जब मैंने किसी बात पे हर्ट फील किया और उससे बात हुई, तो बड़ी ही कैजुअली उसने मुझसे कह दिया कि मैंने थोड़ी ना कहा था तुझसे मेरे लिए इतना सब कुछ कर. सच बताओ, बुरा लगा, बट दैट्स अ फैक्ट. उसने मुझसे कहा थोड़ी ना था. उस दिन मुझे सिर्फ उसकी बात का दुख नहीं हुआ, मुझे अपने आप से भी बहुत सारी शिकायत हुई कि मे बी दिस इज द रीजन आई फेल्ट एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम. मैं खुद को इतना पीछे क्यों छोड़ चुकी थी. फिर वक्त बीता, आज भी वो दोस्त कभी कभी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आती है, बट कट टू दिस न्यू वर्जन ऑफ मी. मैं आज भी उसकी बात सुनती हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है, मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ और फिर बस रुक जाती हूँ. मैं उसकी प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेती. कुछ टाइम पहले उसने मुझसे एक काम करने को कहा था, जैसे यूजुअली उसकी आदत थी मुझसे ऐसे काम करवाने की, और ऑनेस्टली मैं वो करने में कंफर्टेबल नहीं थी. पहले वाली अंतरा शायद हाँ बोल देती, मे भी 10 कदम आगे और बढ़ के उसका काम कर देती. लेकिन इस बार मैंने मुस्कुराकर उससे इतना सिर्फ कहा दैट यार, पता है क्या, मैं ना थोड़ी सी ये करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सॉरी, किसी और से पूछ ले. बस कोई गिल्ट नहीं, कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं. हाँ, उसको शॉक जरूर लगा, और उसने कहा भी कि अरे मतलब पहले तो तुम ये बात मतलब मान लिया करती थी. मैंने भी उसको स्माइल करके कहा कि हाँ पहले करती थी, बट अब नहीं कर पाऊंगी, हाँ सॉरी यार. बात वही खत्म. सो माय डियर लिसनर, पहली बार नो बोलना अजीब लगेगा, थोड़ा गिल्ट भी होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, बाउंड्रीज सही लोगों को और करीब ले आती है। और एक बात जो मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया, मीट पीपल वेयर दे मीट यू। जितना वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही सिर्फ आप भी कीजिए। हर बार अपना 100% या उससे ज्यादा देकर दूसरे का 20% एक्सेप्ट मत कीजिए। सबसे जरूरी, अगर आपको सबको खुश रखने का शौक है और वो करने निकलेंगे तो सबसे पहले आप खुद खाली हो जाएंगे। या इसीलिए बी अ गिवर टू योरसेल्फ फर्स्ट। अपना ग्लास पहले भरिए, फिर दुनिया को पानी दीजिए। बिलीव मी, आप और भी अच्छे इंसान बनेंगे। बस इस बार खुद को खोकर नहीं, राइट? आई होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

अच्छा, आप उनसे ही सवाल करने जाएंगे जिन्होंने आपको सवालों का मतलब बताया है? ना ना ना ना, ये कैसे पॉसिबल है? डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। समटाइम्स यू नो, स्कूल में भी आपने फील किया होगा कि 100 times अगर टीचर सही चीज हमें बताती थी तो 1 time वो कभी गलती करती थी तो हम उन्हें सामने से टोक देते थे कि नहीं मैम, आपने कल इस चैप्टर का नहीं इस चैप्टर का होमवर्क दिया था, तो वो हंस के टाल भी देती थी। बिकॉज इंसान कभी भी गलती कर सकता है यार, वो टीचर हो या हो हमारे पेरेंट्स। आज मेरे हाथों में जो लेटर है वो कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ जी, इस लेटर में लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती, एक बात है मेरी लाइफ में, मुझे अपने पेरेंट्स में बहुत सारी हैबिट्स में गलतियां नजर आ रही हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप में, उनके मेरे रिगार्डिंग जो बिहेवियर है उनमें, तो उनको मैं कैसे बोलूं, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा, एनीवेज, आप अगर इतने अच्छे थॉट को सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं ये बोलना चाहूंगी ये उनके कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग है जो आपके मन में ये थॉट्स ला रही है, और मुझे लग रहा है कि इसी अपब्रिंगिंग को, इसी संस्कारों को देखते हुए आपको अपने पेरेंट्स को टोकना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके घर पे अराइज हो रही है, आप एक बार शांत दिमाग से बताओ ना कहाँ पे किसकी गलती है। नेवर नो, वो आपसे काफी उम्र बड़े हैं, आपसे तजुर्बे पे हैं, तो क्या पता आपसे भी जल्दी अपनी गलतियां पहचान कर वो ठीक कर ले। सो म्यूचुअली आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और ऐसे ही बनते बनते गाने बहुत सारे आपकी तरफ आ रहे हैं डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
4: Did you know one of Kishore Das' most popular songs, 5 Rupaiya Bara Ana,
5: 5 Rupaiya Bara Ana,
4: was inspired by a debt that he owed to a college canteen in Indore? Radio Masti 24/7 Live celebrates Kishore Kumar's melodious voice and timeless tracks on his birth anniversary.

यह है जी मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। चलिए हमारी अगली चिट्ठी की तरफ अंतरा बढ़ते हुए। डियर मस्ती, मेरे बच्चे के किंडरगार्टन की जो मॉम्स है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सच कहूं तो उस ग्रुप में होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, आउटिंग्स होती है, प्लान्स बनते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मन ही नहीं करता उन सब का पार्ट बनने का, लेकिन फिर लगता है कि अगर मैं नहीं गई तो कहीं मेरे बच्चे को ही अलग नहीं फील कराया जाए, और इसी वजह से मैं खुद को फोर्स करती रहती हूँ। अब ये सब ना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगा है, क्या करूं? माय डियर लिस्टनर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट नहीं, आप एंटी सोशल नहीं हैं और ना ही आप एक बुरी मॉम है, ठीक है? तो अपने आप को ये गिल्ट ट्रिप पे, जो कि हमारी हर माँ का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, वेरी इजीली दे गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप। सो आप शायद एक ऐसी इंसान है जिसकी सोशल बैटरी थोड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, विच इज ऑल्सो वेरी ओके, राइट? बिलीव मी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम अक्सर सोचते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है दैट बिलोंगिंग एंड फिटिंग इन दोनों अलग चीजें हैं। फिटिंग इन का मतलब होता है खुद को बदलकर ग्रुप का हिस्सा बनना, और बिलोंगिंग का मतलब होता है जहां आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेड फील करें। और मुझे लगता है इस वक्त आप फिटिंग इन की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं, राइट? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या एक अच्छी माँ होने का मतलब हर कॉफी मीट पर मीटअप करना, हर प्लान में जाना, हर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना? मुझे नहीं लगता हो सकता है और जरूरी है। आपका बच्चा स्कूल में आई एम श्योर खुशी होगा, उसके अपने फ्रेंड्स होंगे, और ये प्रेशर सिर्फ आप खुद पर डाल रही होंगी। नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी एंड असेस। एक और बात, हम पेरेंट्स ना कभी कभी अपने बच्चों के फ्यूचर के डर में अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। अगर मैं नहीं गई तो, अगर लोग क्या सोचेंगे तो, अगर मेरा बच्चा मिस कर गया तो। लेकिन हर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, हर सोशल गैदरिंग में जाना, ये पेरेंटिंग का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने आप से परमिशन सबसे पहले लेनी चाहिए, परमिशन टू से मैं हर बात पर नहीं आ पाऊंगी, और ये बिल्कुल ठीक है। हो सकता है महीने में एक मीटअप पे कॉफी पे चले जाइए, बाकी पोलाइटली मना कर दीजिए, या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको पढ़ते रहिए। जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, अ लॉट ऑफ मॉम्स डू दैट। हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, राइट? अनलेस इट्स एक्चुअली किसी ने अलग से आपको टैग करके पूछा हो। सो माय डियर लिसनर, आपका बच्चा आपसे ये नहीं सीखेगा कि हर ग्रुप में फिट कैसे होना है, वो ये सीखेगा कि खुद की कंफर्ट और मेंटल पीस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। एंड बिलीव मी, ये लेसन उसके बहुत ज्यादा काम आएगा। एक अच्छे पेरेंट का डेफिनेशन पता नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता होता है कि आपको हर जगह पे प्रेजेंट होना है, वही सिर्फ अच्छी माँ हो सकती है। आई थिंक जो इमोशनली अवेलेबल और इमोशनली अवेलेबल प्रेजेंट होता है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए तो सबसे ज्यादा आई थिंक वही अफेक्ट करता है। आई होप दिस रियली रियली हेल्प्स, एंड डू लेट मी नो, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए इफ दिस रियली हेल्प्स यू आउट और नॉट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती दिल से।

0: पता है हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा लेसन जरूर होता है जिसके बारे में वो सोचता है कि काश ये मुझे पहले समझ में आ जाता। मेरा आई थिंक उसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की है, किसी की चिट्ठी में पढ़ रही थी एंड आई वॉज लाइक कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी ही बात कर रहा है। मुझे अगर अपनी लाइफ का एक लेसन बताना हो तो वो जो मैंने लेट सीखा तो वो होगा हैविंग बाउंड्रीज, और जब दिल से नो बोलना हो तब नो बोलना वो सीखना। सच कहूँ ये लेसन मुझे बहुत लेट समझ में आया। मैं बहुत सालों तक यही सोचती रही कि अच्छा इंसान बनना है तो हर किसी के लिए करना पड़ता है, हर रिक्वेस्ट को हाँ बोलना पड़ता है, हर एक्सपेक्टेशन को पूरी करनी होती है, अपनी नहीं दूसरों की। और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई सबको खुश रखते रखते खुद ही को मैं कहीं पे पीछे छोड़ के आई हूँ। काश किसी ने मुझे पहले ही बता दिया होता कि नो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके साथ गिल्ट फ्री होना भी पॉसिबल है। और आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद यही मेरी लाइफ का वो लेसन था, जो मैं पहले सीख जाती तो शायद कुछ दर्द कम होते। लेकिन फिर सोचती हूँ शायद हर लेसन अपना वक्त के साथ आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी लाइफ का वो क्या लेसन था? क्या आपने बहुत देर बाद में रियलाइज किया कि भाई हेल्थ कम्स फर्स्ट, या ये रियलाइज किया पैसा सब कुछ नहीं होता है, या ट्रस्ट अर्न किया जाता है, या फिर किसी और चीज में आपकी जिंदगी बदलती? जरूर बताइए मुझे। एक इंसान का लाइफ लेसन जो है दूसरे इंसान की लाइफ का शॉर्टकट बन जाता है कभी कभी। सो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9158963 पर, आप हमें बता सकते हैं एंड व्हाट्स अ लाइफ लेसन यू लर्नड टू लेट। आई बी वेटिंग आपके जवाबों का। कौन जाने आपका एक एक्सपीरियंस जो है किसी की जिंदगी बदल दे, यू नेवर नो राइट। Well, सुनते रहिए डियर मस्ती दिल से on Radio Masti 24/7 live.
1: He has made us laugh. He has made us cry. Remembering the man with the natural yodel on his birthday. Kishore Kumar on Radio Masti 24/7 live.

0: And I'm back. Radio Masti 24/7 पर this is Renuka with you. And of course, I am your दोस्त on the radio, जो आपको शायद इस समय better समझेगा than many people around you.
1: Dear Masti, दिल से. Because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
0: कहा ना, और वो अनजाना इंसान इस समय मैं हूँ जो लेकर आया ये वाली चिट्ठी of a woman in her 50s. Well, all my life I was active. मैंने घर, करियर, बच्चे, aging parents सबको संभाला है, always running around. लेकिन अब I don't recognize my own body anymore. I started gaining weight even though I don't think I'm eating much more than before. मेरी नींद वो नहीं रही. I'm stressed most of the time. Some mornings I wake up feeling tired instead of refreshed. Even simple things feel different. My strength is not the same. I'm not as flexible. Climbing stairs leaves me breathless. जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, I don't see the confident woman I once was. And I wonder, will I ever feel good and fit again? Is this just what aging looks like? Am I destined to slowly collect diseases as I grow older? Sometimes it feels like no matter how hard I try, I'm fighting a battle. I'm never going to win. मैं इस फेज को कैसे एक्सेप्ट करूं विदाउट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ. अरे यार, आपने तो अभी ट्यून्ड इन सभी औरतों का आई एम श्योर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा. कम ऑन, चीयर अप गर्ल, इट्स जस्ट एज एंड इट्स लाइफ. अरे उसी एज के थोड़े ना रहेंगे जिंदगी भर. एज तो बढ़ेगी और साथ साथ में एक्सपीरियंसेस. और सोचिए ना, देयर सो मच टू एब्जॉर्ब इन दिस वर्ल्ड, राइट? जैसे कि ये गाना, अब सोचो ऋतिक रोशन के बारे में. ओए होए, क्या लग रहा था. कैसे यू कैन फील लो. इमेजिन, ऋतिक रोशन भी तो आज के दिन में 50s में है. चीयर अप गर्ल. यहाँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और वापस आके इस बात का जवाब भी देंगे. ऑलराइट, अगर आपको कुछ कहना है इस चिट्ठी के बारे में, देन टेल मी क्विक बिफोर द म्यूजिकल ब्रेक गेट्स ओवर. इट्स रेडियो मस्ती 24/7 9151896 3. फटाफट जवाब भेजो आप इनको कुछ कहना चाहते हो तो, नहीं तो मेरा जवाब तो तैयार हो ही जाएगा इन गानों के उस पार. गुड इवनिंग.

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
0: Did you know Kishorda was paranoid about payment and strictly followed the policy of no pain no work? Once while working on a film, उन्होंने report ऐसा किया कि भाई set पे पहुँचे आधा शकल पे makeup किए हुए, आधा पैसा तो आधा makeup. That's what he said. Radio Musti 24/7 Live celebrates Kishore Kumar's melodious voice and timeless tracks on his birth anniversary.

राइट, वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, चल रहा है डियर मस्ती दिल से. और इस गानों के ब्रेक से पहले जो चिट्ठी आई थी ऑफ अ लेडी इन हर 50s हु वाज काइंड ऑफ कंसर्न्ड अबाउट लाइफ कैसे बदल रही है, बॉडी कैसे बदल रही है, स्ट्रेंथ वो नहीं रही और अपने आप को शीशे में देख के कॉन्फिडेंस वो नहीं रहा एंड ऑल दैट, राइट. एंड हमने उनको क्या कहा, आइए इधर, आई विल गिव यू अ बिग हग. पहले तो डियर मस्ती दिल से. अरे भाई, जादू की झप्पी हर जगह काम करती है. बट यू नो व्हाट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लिसनिंग टुडे क्वाइटली नॉडिंग अलोंग. सबसे पहली बात मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, यू आर नॉट फेलिंग, योर बॉडी इज चेंजिंग एंड दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. भाई 50s में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, मसल जनरली नेचुरली डिक्रीज होता है, अगर उस पर काम ना किया जाए स्लीप भी थोड़ी सी कम हो जाती है, रिकवरी टेक्स लॉन्गर एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स पीपल मोर देन इट डिड 20 इयर्स अगो. बट इस सब का ये मतलब थोड़े है दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल, इट सिंपली मींस द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड. मे बी इन योर 30s फिटनेस का मतलब होता था फिटिंग इन टू अ सर्टन ड्रेस, और आज के दिन में इन योर 50s फिटनेस का मतलब हो सकता है टू बी एबल टू ट्रैवल कंफर्टेबली, राइट, एंड प्ले विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन वन डे, कैरी योर ओन शॉपिंग, वॉक विदाउट पेन, वेक अप विद एनर्जी एंड फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. अब 30 वाली बॉडी को चेस करना बंद कर दो, बिल्ड द हेल्दीएस्ट बॉडी यू कैन हैव एट द एज दैट यू आर. हर छोटी छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करो, एक एक्स्ट्रा वॉक करके देखो, एक अच्छी अगर रात को नींद आ जाए ना तो सुबह सेलिब्रेट करो, वन हेल्दी मील 1 किलोग्राम अगर कम हो जाए तो नाचो, एंड वन डे विद लेस स्ट्रेस हो तो ओहो हो मजा ही आ जाए. क्योंकि हेल्थ इज नॉट बिल्ट इन वन ड्रामेटिक मोमेंट, इट्स बिल्ट इन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी चॉइसेस. एंड प्लीज डोंट बी अनकाइंड टू द वुमन इन द मिरर, शी हैज कैरीड अ फैमिली, बिल्ट अ करियर, लव डीपली, सैक्रिफाइस्ड एंडलेसली, ऑफकोर्स वो बदल गई है. वेयर दोज इयर्स विद प्राइड एंड ऑल्सो ऑनर देम बाय टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि कभी भी ना स्ट्रांग होने के लिए लेट नहीं होता, हेल्दियर हो सकते हो, खुश हो सकते हो, एंड द गोल इज नॉट टू लुक यंगर, द गोल इज टू फील अलाइव, एंड दैट जर्नी कैन बिगिन आज ही के दिन में. भाई है ना इस गाने के साथ, ख्वाबों के परिंदों को उड़ाओ अच्छे से, जो भी हो सो, और क्या जो भी हो सब कुछ कर चुके हो आप लाइफ में, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्माइल अ लिटिल बिट मोर, एंड यस स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7. ऑलराइट.

जिस तरह मूवीज में बहुत सारे स्टंट्स दिखाते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में थर्ड व्हील का जिक्र करने लगते हैं ना, उन बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड अभी मेरे हाथों में जो लेटर आया है वो यही कहना चाह रहा है बिना कुछ कहे भी। आंटी, इसमें लिखा है, हेलो डियर मस्ती, मैं अपने बारे में ज्यादा ना बताते हुए बताना चाहूंगी, वन ऑफ माई फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो मेरे लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करती रहती है, और ये चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर ली है, तो क्या मुझे अपनी दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए? अब इस पर मैं तो ये कहूंगी कि देखो, ताली दो हाथ से बजती है और आप एक तरफा डिसीजन लेने का सोच रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी फ्रेंड जो है वो गलत है, लेकिन आपकी फ्रेंड आपसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस या दूर के रिलेशन में है। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर पर विश्वास होना चाहिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनका एक्शन का क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है। अगर उनके एक्शन का रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि कुछ है ही नहीं, वो इन चीजों को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, वो एकदम लॉयल है, उनका तो इन गलतियों में या इस एफर्ट्स में 0.001% भी योगदान नहीं है, तो आपको अपनी दोस्ती तोड़नी नहीं, बट हाँ थोड़े डिफरेंसेस ले आने चाहिए। बट हाँ, उनके एक्शन से इनका कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहा है, तब आपको दो तरफा चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। राइट, आई होप आपको मेरी डायरेक्शन से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या हिंट देना चाह रही हूँ। ऑल ऑफ सडन आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, साइमल्टेनियसली गाने और बातें लगातार डियर मसीह दिल से शो पर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: डियर मस्ती दिल से सुन रहे हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए अगली चिट्ठी की तरफ हमारे बढ़ते हैं यहाँ पर, जिसपे लिखा हुआ है, बाय द वे मैं हूँ अंतरा आपके साथ। डियर मस्ती, मेरी फैमिली में एक ऐसे रिलेटिव हैं जिनका डिसीशन, हर डिसीशन में कुछ ना कुछ बोलना उनको जरूर होता है। मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मॉम कोई भी छोटा या बड़ा डिसीशन लेने से पहले उन्हें कॉल करती है और फिर वो वही करती है जो वो कहते हैं। इस बात को लेकर मेरी मेरे पेरेंट्स से बहुत आर्गुमेंट होने लगे हैं और सिचुएशन सिर्फ और खराब होती हुई जा रही है। मैं क्या करूं? सो माय डियर लिस्नर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको उस रिलेटिव के फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा अपनी हेल्पलेसनेस से आई थिंक इरिटेशन हो रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे अपने पेरेंट्स अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के इन्फ्लुएंस में लेकर चल रहे हैं तो नेचुरली दिल करता है उनको बोलो कि भाई ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन फिर जितना समझाने की कोशिश करते हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि हम उनका डिसीजन बदलना चाहते हैं और वो महसूस ये करते हैं कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। सो डियर लिसनर, एक और पर्सपेक्टिव आपको जस्ट एक लाइट में दिखाना चाहती हूँ। हर जनरेशन का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, कुछ लोगों को किसी ट्रस्टेड इंसान से कंसल्ट करके सुकून मिलता है। हो सकता है आपकी मॉम के लिए वो रिलेटिव सिर्फ एक रिलेटिव ना हो, उनके लिए वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो या कोई ऐसा इंसान जिसके एडवाइस पर उन्होंने सालों से ट्रस्ट किया हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एडवाइस ही सही होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी मॉम ये सब शायद वीकनेस की वजह से नहीं, अपनी आदत और ट्रस्ट की वजह से कर रही है। पीपल डोंट चेंज बिकॉज वी आर्ग्यू बेटर, दे चेंज व्हेन दे फील अंडरस्टूड। तो हर डिसीजन पर फाइट करने के बजाय कभी जस्ट एक दिन दो कप चाय के साथ उनके साथ बैठिए और उनसे ये मत कहिए कि अरे भाई आप तो हमेशा ही उनकी सुनती हो, मेरी कहां सुननी है आपको। उसकी जगह मे बी यू कैन आस्क कि मम्मी जब आप उनसे बात करते हो डू यू रियली फाइंड दैट पीस, अदर एडवाइजर्स यू थिंक आर रियली रियली गुड। बिलीव मी, कभी कभी एक सवाल ना 10 आर्ग्यूमेंट्स से ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर धीरे से अपनी बात रखिए कि मुझे मम्मी बस इतना लगता है कि आप अपनी जजमेंट पर भी उतना ही ट्रस्ट कर सकती हैं जितना उनकी एडवाइस पर करती हैं। देखिए, हम अपने पेरेंट्स की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वो हमारी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ अपनी बात कैसे रखते हैं उससे रिलेशनशिप जरूर बदल सकता है। और वैसे भी हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस तब तक ही रहता है जब तक हम अपनी आवाज इस्तेमाल करना नहीं सीखते। इसीलिए आप अपनी बात कहना भी मत छोड़िए, बट उसको प्यार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, बिना हर कॉन्वर्सेशन को बैटल बनाए बिल्कुल उनको बता दे, है ना। Hope this helps. Really, really hope this helps. Radio Masti 24/7 Live, stay tuned. आप सुन रहे हैं Dear Masti, दिल से.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
7: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
8: Oh, last link. जी हाँ, इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही तक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑनट्रैक के साथ आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। पता है आज जब मैं सारे लेटर्स यू सुन रही थी और खुद के भी लेटर्स देख रही थी जो मेरे पास आए थे, एक चीज मुझे बार बार फील हुई, वो ये थी कि हम सब अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, राइट। अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग लोग मिलते हैं, लेकिन इमोशंस सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। किसी को ट्रस्ट टूटने का दर्द है तो किसी को मदरहुड का ओवरवेल्म है, कोई बाउंड्रीज बनाना सीख रहा है तो कोई बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात बिना जज करके सिर्फ सुन ले। और शायद इसी बात ने मुझे एक चीज सिखाई है, दैट लाइफ तब आसान नहीं होती जब प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, लाइफ तब थोड़ी हल्की लगती है जब प्रॉब्लम्स बांटने के लिए कोई मिल जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम तो छोटी है या लोग क्या सोचेंगे या छोड़ो यार किसको बताने से क्या ही हो जाएगा। कभी कभी सोल्यूशन बाद में मिलता है, लेकिन दिल पे जो एक हैवीनेस सी फील होती है वो सिर्फ बोल देने से ही हल्का हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो शायद आप अपने घर वालों से नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड से नहीं कह पा रहे हो या सिर्फ किसी न्यूट्रल इंसान से शेयर करना चाहते हो, तो याद रखिए गूगल नहीं, चैट जीपीटी भी नहीं, डियर मस्ती दिल से ह्यूमन टच का, ह्यूमन बातों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी एआई मुकाबला नहीं कर सकता है। सो हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें, कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

की तस्वीर निगाहों में, तस्वीर में देखे रंग, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

मौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा। मैं चुटकी से मचल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता। नहीं कोई मेरा सानी, तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं, गुनाह और पाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो
3: give me love and give me more थोड़ा

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: माय माशुका रेडियो मसी 24/7 पर सुबह सुबह ना कोई भगवान का नाम, हर बार आके मैं यही बोलती हूँ और ये अंतरा है फिर माशुका जैसे गाने, उफ क्या होगा इसका।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: इसे कहते हैं फ्राइडे का ट्रांजिशन, जो कि बहुत जरूरी होता है। जब आपको पता चल जाए लास्ट भक्ति गीत के बाद, जैसे ही ऐसा आए कि भाई ये क्या हो गया, फ्राइडे, इट्स फ्राइडे।
0: हाँ भाई, तो बल्ले बल्ले फ्राइडे बैसाखी के म्यूजिक के साथ में शुरू करते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम वन, वेलकम ऑल, दिस इज मस्ती मैडनेस। एंड ऑफ कोर्स मस्ती मैडनेस पर द मैड मैड मैड डुओ व्हिच इज अंतरा एंड रेणुका ब्रिंगिंग टू यू द वियर्डेस्ट खबरें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यों भाई अंतरा, शुरुआत में आपको लगता है कि हमारी आज तैयारी पूरी है या नहीं है?
2: हमेशा हमारी तैयारी कब नहीं पूरी होती है। आई मीन आई कैन ओनली से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पहले एक बीच में टाइम आया था जहां पर हम एक दूसरे से कहते थे कि आजकल खबरें नहीं आ रही है ना, ज्यादा नहीं आ रही है। राइट नाउ इट इज आई थिंक बहुत ज्यादा,
0: आई एग्री,
2: ज्यादा ही आ रही है।
0: आई एग्री, आज का शो मैं 6 घंटे का भी कर सकती हूँ क्योंकि इतनी खबरें हैं कि पूछो मत, मजा आने वाला है। एंड यू नो व्हाट अंतरा, तेरा लोहा बदन, कौन बोलता है ऐसे? पता है मैंने हाल ही में ये भी रियलाइज किया है कि a lot of my friends, okay, when they say, oh, अच्छा you're on the show, अच्छा इस टाइम you're on the show, उस दिन मजा आया कि हम सारे के सारे बैठे हुए थे एंड सडनली कोई ऐसा टॉपिक आया तो उन्हीं में से किसी ने बोला अरे ये तो फ्राइडे मॉर्निंग के शो में जा सकता है। मैंने कहा तुम तो सुनते नहीं थे, क्या हुआ?
2: जी
0: तो
2: बिल्कुल ऐसे ही पकड़े जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब यही बात है, करते सब है, बताता कोई नहीं है,
2: कोई नहीं है।
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर आप भी कीजिए, हम भी करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। ठीक है, ये वाला गाना
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बहुत गर्मी, क्या करें इस गर्मी में, बताओ ना।
2: हाय हाय हाय, गर्मी है, कहाँ है सांसों में, रिमेम्बर दो सॉन्ग्स।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
2: हाय हाय हाय, तूफान है, कहाँ है सीने में, ओ माय गॉड, कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से। गुड मॉर्निंग।
1: पहले ना मेरे को समझ में नहीं आता था, जब ये बहुत ये जो ओवर ड्रामेटिक मूवीज होती थी कि उसमें ना जब भी ये लोग प्यार की बात करते हैं तो ये इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रहे होते हैं एक दूसरे के सामने, लाइक व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू, लाइक हाउ इट वाज, इट यू नेवर यूज्ड टू मेक सेंस टू बी, कि मतलब इतना जोर जोर से कि मतलब इवन तो छाती ऊपर नीचे हो रही है पूरी सांस।
2: ओके, सो द अदर डे, आई नो तेरी न्यूज है बट वी लीव दैट न्यूज फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। लेकिन पता है क्या हुआ, उस दिन व्हेन आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग एंड सडनली देयर वाज अ कॉल दैट केम, ओके, एंड दिस वाज ऑब्वियसली मोबाइल पे कॉल आ रहा है, नंबर सामने, सब कुछ, मैंने उठाया, कोई बोला नहीं, सो शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड ब्लैंक कॉल, यस, यू नो, आफ्टर सो लॉन्ग। शी सेज, यू रिमेम्बर जब हम एक दूसरे को कॉल्स करते थे उस टाइम पर, हाँ, मतलब एक दूसरे में किसी को भी, तो हम कभी कभी कोई सामने वाला बोलता नहीं था, कभी सिर्फ सांसों की आवाज आती थी।
1: आई नो, यस यस, एग्जैक्टली दैट, आई मीन मतलब हमारा, अच्छा, माय बॉलीवुड क्रेज वाज सो मच, यू रिमेम्बर हम आपके है कौन में, देयर इज लेटर हाफ में एक सीन है जब माधुरी दीक्षित सलमान खान एक दूसरे को फोन पे होते, माधुरी दीक्षित बच्चा बकरी होती है एंड जोर जोर से ऐसे ऐसे करके सांस ले, मैं ना मुझे लगता था कि प्यार ऐसे ही होता है, जब तक आप ऐसे सांसें ना लो ना, when you are not in love if you don't never have done it, so I was like when I am in love meko bhi aise zor zor se chhati upar niche wali saanse leni hai, tabhi prove hoga ki main pyar mein hu,
2: to mujhe lagta hai next time if you see me and teri zor zor se upar niche chest nahi ho rahi hai to iska matlab hai you don't love me, हाई हील्स पे नचे और जोर जोर से सांस ले, यही है, अगर कोई सामने वाला आपको ऐसे देख के नहीं कर रहा है, मतलब दैट पर्सन डजंट लव यू अकॉर्डिंग टू अंतरा।

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, छोड़ो यहाँ। अंतरा जोर जोर से अभी भी सीने में गर्मी जोर जोर से सांसें ले रही है, उसको प्यार हो गया मुझे लग रहा है।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: अब ये सांसें सिर्फ जिम में आती है, पता नहीं नाउ आई वांट टू मेक ऑफ इट, बट देन दिस इज व्हाट द रियलिटी इज राइट नाउ। कमिंग बैक टू द खबर भाई, जापान में पड़ रही है सॉलिड मस्त वाली गर्मी। यू रिमेम्बर इन वन ऑफ द एपिसोड्स वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ यू नो द वुमेन वर सेइंग कि भाई इनको तुमने शॉर्ट्स में बुला लिया है, हमें तुम हमारा ड्रेस कोड चेंज नहीं कर रहे हो, गर्मी क्या सिर्फ इनको लग रही है। तो भाई आई थिंक जापान हैज काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट और उन्होंने कहा कि कुछ और भी करते हैं, ऐसा क्या है। अब उन्होंने जो है ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स लगा रखे हैं जापान में जगह जगह।
0: अच्छा, ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या अंदर घुस के बैठ जाते हैं शेल्फ पे या क्या करते हैं, अंडों वाली जगह पे बैठ सकते हैं?
2: बहुत ही विशफुल थिंकिंग है ये, एटलीस्ट मेरे एंगल से। रेणुका तो जैसे तैसे करके फिट हो भी जाएंगी, मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। या वो टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है ना वो बिल्कुल उसमें जैसे तैसे करके शी कैन से। सो बेसिकली ये जो टेम्परेचर इसमें रहता है 15 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक मीठा मीठा बना रहता है। जब आप बहुत ज्यादा मतलब यू नो इसमें एक कॉइन डालो, दरवाजा खुल जाता है, अंदर जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठो, जस्ट यू नो थोड़ा गर्मी पसीना वसीना सुखाओ, थोड़ा सा नॉर्मल करो, फिर बाहर निकलो, फिर अपना चलते बनो। एंड इट इज लाइक प्लेस जगह जगह पर।
0: Oh, wow. क्या उसमें अंतरा उसमें दो लोग जा सकते हैं एट अ टाइम, बताओ।
2: मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन।
0: लेट माय बॉडी लूज, क्या बोल रही हो तुम?
2: मुझे पता था, मतलब हमारे दिमाग जो है ऐसे चलते हैं। मुझे भी ये लगा था कि ये अगर अभी इंडिया में खुला होता तो अभी तक ये एक डेटिंग स्पॉट बन गया होता।
0: यार व्हाई नॉट, मैं एक्चुअली मैं तो कम्युनिटी सर्विस सोचती हूँ हमेशा, तो मुझे लगा देखो एक से भले दो यू नो ज्यादा लोगों का फायदा हो जाएगा, क्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भी ना सब गलत ही सोचते हो तुम।
2: नहीं नहीं, वो जो हीट अंदर बढ़ेगी उसका क्या रेणुका?
0: हाँ बस, तो टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा और कुछ नहीं।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: और मध्य प्रदेश में एक सांप ने डिसाइड किया कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करेगा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी हो।
3: सांप को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है?
1: हाँ
3: भगवान,
1: मतलब ऐसा कंपटीशन का जमाना आ गया है कि एक 24 साल की महिला को इस सांप ने दो मिनट में 5 बार काटा। पूछो भाई क्या हो गया। आराम से क्या ऐसी भी क्या तेरे अंदर की जहर की आत्मा जागी है कि तू काटे जा रहा है, 2 मिनट रुक जा। सो बेसिकली ये औरत जो है 24 साल की राधाबाई आहिरवार, ये झाड़ू लगा रही थी अपने किचन में, ठीक है, और वहां पे 5 फुट का बड़ा सा लंबा सा काले रंग का एक सांप उसके बर्तनों में छुपा हुआ था। तो जब उसने अपना हाथ कबर्ड के वहां पर हिलाया तो उस सांप ने उसके राइट पाम पर मार दिया, ठीक है, डंक। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने शी ट्राई टू शेक ऑफ द रेप्टाइल, राइट, जो उसके हाथ के पास आ रहा था, तो वो मरता गया। 5 बार उसने उसको बाइट किया इन लेस देन 2 मिनट्स। भाई क्या हो गया, मतलब सांप, ऐसी भी क्या बात हो गई, क्या हो गया। फिर उसके बाद एनीवे उसको लेके गए, क्या हुआ,
3: लहू मुंह लग गया।
1: ये लकी एंगल पे आज के दिन में माया माया माया माया पूरा भी तारे झूलने सारे। सांप भी घूमते घूमते उसने सोचा कि एक बार काटता हूँ फिर दूसरी बार। देखो याद है जैसे मैंने अभी सुबह सुबह गाना गाया था सांसों वाला, है ना, वैसे ही काटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
2: इसमें भी था वो स्टेप,
1: है ना,
2: सांस वाला,
1: वही सांस वाला, राइट, ऊपर नीचे, यू नो।
2: हाँ,
1: अब देयर्स अ लॉट फॉर मी टू से राइट नाउ, बट आई थिंक off mic and we should talk otherwise. But going back to the woman, she was rushed to the hospital. और उसके बाद of course करना क्या चाहिए, अगर आपको सांप वांप ने काट लिया तो भाई ऐसा है कि आप टाइम मत वेस्ट कीजिए कि हम पुराने जमाने की कोई टोटके लगाएंगे, सीधा हॉस्पिटल जाइए और जो आपका बिटन वाला लिम्ब होता है ना, जस्ट टू गिव सम नॉलेज ऑल्सो टू पीपल, जहां पर भी काटा होता ना उसको हार्ट लेवल से नीचे रखिए क्योंकि दैट विल स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ वेनम, ओके, याद रखना ये बात। हाँ, और रिमूव,
2: बॉलीवुड हैज टॉट अस अ वेरी डिफरेंट रोमांटिक टेक्निक ऑफ डूइंग इट,
1: किस करने की जरूरत नहीं है और ना ही
2: चूस के निकालेंगे,
1: प्लीज डोंट ट्राई ऑल दैट, ओके, सीधा हॉस्पिटल जाना, लेट द डॉक्टर चूस और व्हाटएवर दे हैव टू डू, ओके, गुड मॉर्निंग।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: स्पैम कॉल से क्या आप हो परेशान? भाई ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए हैं, ब्रिलियंट।
3: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
4: वैसे तो अगर हमें कोई बोले ना कि सुबह 7 बजे उठ के काम पे चले जाओ, ये काम है वो काम है, तो नहीं जी नहीं, हमसे ना होगा। लेकिन हमारे से सुबह सुबह फ्राइडे को आइडियाज लेने हो तो वो ब्रिलियंट से कम नहीं निकलते वैसे, क्यों भाई? गुड मॉर्निंग
2: भाई, ये शो ही कुछ ऐसा है कि नॉट ओनली इट गिव्स अस ऑल दीज अतरंगी खबर्स, बट इट आल्सो गिव्स अस जीनियस एंड ब्रिलियंट आइडियाज एज वेल। साथ साथ में मिस्टर ली है इनका नाम, एंड जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अस, तो आपको पता ही है कि अगर आपने स्पैम कॉलर्स को और इस तरह की चीजों को ब्लॉक नहीं कर रखा है अपने फोन पर, तो मतलब भर भर के आते हैं। And if you have been in India, if you have an Indian number, वहाँ तो बिल्कुल free fund में आते हैं, like every day. So well, तो he this guy was also Mr. Lee भी बहुत परेशान थे spam calls से. So instead of just blocking the calls, he came up with this genius solution. Okay, तो इन्होंने क्या किया कि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही purchase this premium rate का phone number. Now what this premium rate का phone number does is it is भाई जो 90s में जैसे इनकमिंग चार्जेबल होती थी ना, तो बेसिकली जो भी आपको कॉल कर रहा है वो कॉलर को पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं टू रिमेन ऑन द लाइन। एंड ही एक्चुअली नाउ इमेजिन द स्पैम कॉलर इज कॉलिंग यू, टॉक टू हिम, भाई बंदा कमा रहा है उल्टा
4: ओ बात करने से।
2: Yeah, incoming. So he updated his detail and everything, filled out forms naye number ke saath. Now when they did, the company behind the calls were billed by the minute with this portion of those fees which is paid back to Mr. Lee.
4: कमाल है यार,
2: through a revenue sharing program. And जब भी कोई sales person call करता है, Lee कहता है मैं तो बात करता हूँ, मैं बहुत देर तक बात करता हूँ
4: क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। नॉट टू बैड, आई लाइक दिस, आई एक्चुअली क्वाइट लाइक दिस। तो भाई अगली बार आपको कोई ऐसे फोन करे ना, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप उसको डांटना मत, आप बातें करना, है ना? एग्री?
2: टॉक अबाउट बैकअप प्लान, प्लान ए बी, ये है 8.2
4: भैया, दिस इज पैसिव इनकम, नेक्स्ट लेवल, कमाओ,
2: नेक्स्ट लेवल,
4: कमाओ, वेल ले लोग, आई टेल यू।